0: गावकर खानदेश कॉलेज एज्युकेशन सोसायटीच्या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर जळगाव यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलं आहे माइंड स्प्रिंग 2026 एक्झिबिशन कम सेल. आणि प्रथमच या एक्झिबिशनची संकल्पना आहे टर्न युअर इनोव्हेशन इंटू एंटरप्राइज, म्हणजेच तुमच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनेचं रूपांतर उद्योजकतेमध्ये. 6 आणि 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी बास्केटबॉल कोर्ट खानदेश कॉलेज एज्युकेशन सोसायटीचे मूळचे महाविद्यालय जळगाव कॅम्पस मध्ये. या एक्झिबिशन मध्ये आयडिया, प्रोटोटाइप, वर्किंग प्रॉडक्ट आणि रनिंग स्टार्टअप विथ सेल्स अशा विविध स्तरांवरील नाविन्यपूर्ण कल्पना आणि उत्पादनं पाहायला मिळणार आहेत. म्हणूनच जळगावकरांनो, नवीन कल्पना पाहण्यासाठी, नवीन उत्पादनं जाणून घेण्यासाठी आणि युवा उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि इनोव्हेशनच्या या भन्नाट विश्वाचा अनुभव घेण्यासाठी 6 आणि 7 ऑक्टोबरला भेट द्या माइंड स्प्रिंग 2026 एक्झिबिशन कम सेलला. कारण कल्पना फक्त मनात ठेवायची नसते, तिला संधी द्यायची असते आणि त्या संधीचं एंटरप्राइज मध्ये रूपांतर करायचं असतं. माइंड स्प्रिंग 2026 टर्न युअर इनोव्हेशन इंटू एंटरप्राइज. आपणही या भन्नाट उपक्रमाचा नक्की लाभ घ्या आणि माइंड स्प्रिंग 2026 ला आवर्जून भेट द्या.
1: नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, हमने गुरु की महिमा सुनी, गुरु के बाणों की मार को समझा और कल हमने अंधे गुरुओं से सावधान रहने की बात भी की. लेकिन आज कबीर एक ऐसी कड़वी सच्चाई हमारे सामने रख रहे हैं जो आज के युग में और भी सत साबित हो रही हैं. वह हैं गुरु और शिष्य के बीच लालच का खेल. जब रिश्ता सत्य के लिए नहीं बल्कि स्वार्थ के लिए जुड़ता है तो उसका अंत क्या होता है, आइए जानते हैं आज के दोहे से. श्रोताओं, कबीर कहते हैं कि अध्यात्म कोई व्यापार नहीं है, लेकिन जब गुरु के मन में धन या मान का लालच आ जाए और शिष्य के मन में कोई सांसारिक इच्छा, तो वह रिश्ता वहीं खत्म हो जाता है. कबीर ने इसे बहुत कठोर शब्दों में बयां किया है. ना गुरु मिल्या ना शीश भया, लालच खिल्या दांव, दुन्यु बड़े धार में चढ़ी पाथर की नाव.

चढ़ी पाथर की नाव रे साधो, चढ़ी पाथर की नाव। इस दोहे का दर्शन है निस्वार्थ भाव का दर्शन। कबीर कहते हैं, ना गुरु मिला ना शीश भया, ना तो उसे सच्चा गुरु मिला और ना ही सच्चा शिष्य बन पाया। क्यों? क्योंकि बीच में लालच ने अपना दांव खेल दिया था। गुरु को लालच था शिष्य की संपत्ति या उसकी संख्या का, और शिष्य को लालच था गुरु के आशीर्वाद से अपना कोई सांसारिक काम निकलवाने का। कबीर कहते हैं कि यह रिश्ता सत्य की तलाश नहीं बल्कि स्वार्थ की सौदेबाजी थी, और इसका परिणाम कबीर एक अद्भुत उपमा देते हैं, चढ़ी पाथर की नाव। यह ऐसा ही है जैसे कोई पत्थर की नाव पर बैठकर दरिया पार करना चाहे। पत्थर की नाव तो खुद डूबती ही हैं, उस पर बैठने वाले को भी ले डूबती हैं। जब गुरु और शिष्य दोनों के आधार ही भारी पत्थर जैसे लालच हों, तो वे दोनों बुढ़े धार में, वे दोनों संसार की इस मायावी धार में डूब जाते हैं। दर्शन कहता है कि गुरु शिष्य का संबंध पारस और लोहे जैसा होना चाहिए, न कि दुकानदार और ग्राहक जैसा। कबीर आज हमें चेता रहे हैं कि जहां लालच है वहां बोध कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, आज हम हर जगह इंस्टेंट शांति और चमत्कार ढूंढ रहे हैं। क्या हम गुरु के पास ज्ञान के लिए जा रहे हैं या अपनी इच्छाओं की लिस्ट लेकर? याद रखिए, अगर नाव पत्थर की होगी तो डूबना तय है। अपनी श्रद्धा को लालच से मुक्त रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

0: बा तथागता दशशिलाच्या संवर्धनानंतर तू कथन केल्यास अपरिहार्य बाबी लोभ अज्ञान प्राणहत्या क्रोध व्याभिचार आणि असत्य संभाषण. तू म्हणालास या बाबींनी ढासळतो पाया व्यक्तिगत शुद्धीचा. त्यामुळे माणसाने एकमेकांशी वागावे सदाचरणाने, करावा समावेश जीवनात आपल्या आर्य अष्टांगिक मार्गाचा दशशील संवर्धनासह माणसाने. करावे प्रेम माणसावर, परंतु प्रेमाच्याही पुढे त्याने करावी मैत्री माणसाशी. मैत्री ही असते व्यापक, जास्त समर्पक प्रेमापेक्षा. मैत्रीमध्ये जाणीव होते बंधुभावाची, ती नसते मर्यादित मानवापुरती. सद्गुणी माणसाला असते आवश्यकता आचरणासाठी, प्रज्ञेची बुद्धीची विवेकाची. आंधळेपणाने झालेले सत्कृत्य म्हणताच येते उचित असे नाही. सद्गुणाचा मार्ग उतरला पाहिजे हा प्रज्ञेच्या कसोटीला, विवेकाच्या जाणीवेला. बा तथागता तुला विचारले एकदा, तुझ्यानंतर धम्माचा वारस कोण? तू म्हणालास व्यक्तिनिष्ठा बनते धम्माची अडसर, तुम्ही धम्माचे दायाद व्हा. धम्म म्हणजे नीती, धम्म म्हणजे विचार, धम्म म्हणजे शील संवर्धन, धम्म म्हणजे शील संपन्न जगण्याचा उत्कर्ष. धम्माचे अनुसरण करण्याचा तू संदेश दिलास आणि अतिशय स्पष्टपणाने तू म्हणालास मी तुमचा मार्गदाता आहे, मोक्षदाता नव्हे. धर्म प्रवर्तकांनी बऱ्याच साक्षात्कारी म्हणून घेतले स्वतःला. म्हणाले बरेच, मी आहे निर्माता तुमचा, करा माझी पूजा आणि मिळून घ्या मोक्ष तुमच्या आत्म्याला. कुणी म्हणाले मीच देव, मीच तुमचे सर्व काही. कुणी म्हणाले मी ईश्वराचा पुत्र, तर कुणी म्हणाले मी ईश्वराचा प्रेषित दूत. परंतु तू नाकारलेस ईश्वरवादाला, कल्पना कर्मकांडाला, कोणत्याही अविवेकी असत्य विधानाला. तू म्हणाला नसतेच असे काही मोक्ष मिळवून देणे हातात कोणाच्या उद्धारासह. आपणच करावायचा असतो उद्धार आपुला ज्ञानाने, शील संवर्धनाने, आचरणाने, प्रज्ञावंत होऊन अत्तदीप भव मार्गाने प्रवास करून. तू म्हणालास मी तुमचा मार्गदाता आहे, मोक्षदाता नव्हे. निब्बाणाकडे जाण्याचा मार्ग मी दाखवीन तुम्हाला. पण निब्बाणाकडे जाण्याचा संकल्प आणि वाटचाल करावायची असते ज्याने त्याने. समाधान आनंद आणि तटस्थता लाभत नसते अशी कधीही कुणाच्या कृपेमुळे. त्यासाठी आपल्यालाच चालावा लागतो बुद्धिवादी शील मार्ग संकल्पाने. बा तथागता तू म्हणालास निब्बाण म्हणजे परमसुख. निब्बाणासारखे परमसुख लाभत नाही दुसरे कशाने. तुझ्या सर्व सिद्धांतामध्ये निब्बाण हा सिद्धांत केंद्रवर्ती. हे निब्बाण म्हणजे काय? तुझ्या अगोदर काही लोकांनी निब्बाणाला केला प्रयत्न असा संबोधण्याचा की निब्बाण म्हणजे मोक्ष होय. चार प्रकारचा मोक्ष मानला जात असे पूर्वी. त्यातील पहिला म्हणजे खा प्या मजा करा याचे स्वरूप जड. दुसरा मानला जात असे यौगिक. तिसऱ्याला म्हटले जाई ब्राह्मणी आणि चौथा औपनिषदिक. होते साम्य ब्राह्मणी आणि औपनिषदिक निब्बाण कल्पनेमध्ये. या कल्पनांनी संबोधले अस्तित्व स्वतंत्र आत्म्याचे. पण तथागता तू या सिद्धांताचा निषेध केलास आणि त्या शिकवणुकीचे खंडन करून त्याची मांडणी किती फोल आहे ती निरर्थकता तू सिद्ध केलीस. जड कल्पनेमधील निब्बाण म्हणजे इंद्रियांची तुष्टी होय, इंद्रियांचे शमन असल्यामुळे अंश मात्र अध्यात्म नसते, त्यामुळे नाही होऊ शकत कल्याण माणसाचे जड मार्गाने, हा नव्हे निब्बाण मार्गाची प्राप्ती करणारा.
1: नमस्ते, जळगावकर. खानदेश कॉलेज एज्युकेशन सोसायटीच्या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर जळगाव यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलं आहे माइंड स्प्रिंग 2026 एक्झिबिशन कम सेल. आणि प्रथमच या एक्झिबिशनची संकल्पना आहे टर्न युअर इनोव्हेशन इंटू एंटरप्राइज, म्हणजेच तुमच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनेचं रूपांतर उद्योजकतेमध्ये. 6 आणि 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी बास्केटबॉल कोर्ट खानदेश कॉलेज एज्युकेशन सोसायटीचे मूळचे महाविद्यालय जळगाव कॅम्पस मध्ये. या एक्झिबिशन मध्ये आयडिया, प्रोटोटाइप, वर्किंग प्रॉडक्ट आणि रनिंग स्टार्टअप विथ सेल्स अशा विविध स्तरांवरील नाविन्यपूर्ण कल्पना आणि उत्पादनं पाहायला मिळणार आहेत. म्हणूनच जळगावकरांनो, नवीन कल्पना पाहण्यासाठी, नवीन उत्पादनं जाणून घेण्यासाठी आणि युवा उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि इनोव्हेशनच्या या भन्नाट विश्वाचा अनुभव घेण्यासाठी 6 आणि 7 ऑक्टोबरला भेट द्या माइंड स्प्रिंग 2026 एक्झिबिशन कम सेलला. कारण कल्पना फक्त मनात ठेवायची नसते, तिला संधी द्यायची असते आणि त्या संधीचं एंटरप्राइज मध्ये रूपांतर करायचं असतं. माइंड स्प्रिंग 2026 टर्न युअर इनोव्हेशन इंटू एंटरप्राइज. आपणही या भन्नाट उपक्रमाचा नक्की लाभ घ्या आणि माइंड स्प्रिंग 2026 ला आवर्जून भेट द्या.
2: नमस्कार, ओम शांती. दुरितांचे तिमिर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात. दुरित क्या है, तिमिर क्या है, इसके ऊपर हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की. तिमिर अंधेरा, रात, और ये रात जो है वो कब खत्म होगी उसके इंतजार में बहुत सारे आत्माएं, हम लोग कभी कभी बहुत बार सोचते हैं कि ये रात खत्म कब होगी. देखिए, शायर लोग जो होते हैं वो भी रात को बहुत अच्छी तरह से वर्णन करते हैं रात का. संत लोग जो है वो भी वर्णन करते हैं. हर एक का कवि जो है अपनी अपनी भावना के अनुसार रात का वर्णन करता है. रात अच्छी है या बुरी है? रात अच्छी भी है और बुरी भी है. क्योंकि देखिए, हमारे जो कहावतें हैं, हम जो कहते हैं, हम जो बोलते हैं, वो भी मुझे लगता है आध्यात्मिक स्वरूप से बोलते हैं. रात में अगर कुछ दुष्कर्म होता है तो हम मान लेते हैं, लेते नहीं लेते. रात में अगर दुष्कर्म होता है तो मान लेते हैं, कोई बुरी बात कहता है तो भी हम सह लेते हैं. लेकिन अगर सुबह सुबह उठ के कोई बुरी बात कहता है तो हम क्या कहते हैं? सुबह सुबह अशुभ मत बोलो, सुबह सुबह ऐसी बातें मत करो. मीन्स सुबह जो है वो आशा है, रात जो है वो निराशा है, और इसे निशा भी कहते हैं रात को. तो ये रात जो है वो तो दिन में है, हर दिन में दिन भी आता है, रात भी आती है, और वो चक्र शुरू है. अगर ये चक्र दिन और रात का शुरू है तो युगों का भी चक्र शुरू होगा. हम तो कहते हैं साइकिल, टोटल साइक्लिक वर्ड है, लीनियर है ही नहीं. साइक्लिक वर्ड है, वर्ल्ड है, लीनियर है ही नहीं, और इसलिए विश्व. और इसलिए जब भी सुबह होती है, सुबह का प्रहर भी, उसे राम प्रहर कहा जाता है. राम प्रहर, रावण प्रहर नहीं. आजकल क्या हो गया है, हमारा रामायण सीरियल शुरू हो गया. देखने के बाद मुझे आश्चर्य लगा कि राम के बजाय रावण हिट हो गया, रावण हीरो बन गया। रावण के ऊपर व्हाट्सएप पे जोक भी आते हैं, उसमें ये भी कहते हैं रावण ने बहुत अच्छा काम किया। रावण ब्राह्मण था, रावण पंडित था, है बिल्कुल सही है, क्योंकि रावण जो है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में, रावण एक संकल्पना है और वो रावण जो है वो माया है, मायावी रावण। तो ऐसा रावण सारे विश्व में भरा हुआ है, हर एक के मन में भरा हुआ है और हर एक के मन में राम भी है। वो मन में जो राम है वो सुबह जागृत होता है और राम प्रहर में, इसलिए हम कहते हैं कि अशुभ मत बोलो शुभ बोलो। तो ये दुरितान से तिमिर, तिमिर के ऊपर हमने अभी चर्चा कर रहे थे। तो ये तिमिर जब जाएगा, कब जाएगा, जब सूर्य आएगा, और इसलिए दूसरा जो चरण है या दूसरा आधा चरण है, दुरितान से तिमिर जावो जावो, ठीक है जाए, लेकिन विश्व स्वधर्म में सूर्य पाहो। विश्व स्वधर्म और सूर्य कितना कहे है, कितना बोले उतना कम है। ये विश्व जो है, ये विश्व ची माझे घर, हे विश्व ची माझे घर, सारा विश्व जो है वो मेरा घर है। बंधुत्व, विश्व बंधुत्व, ये सारे विश्व में जो बांधव है, सारे विश्व में जो लोग है वो मेरे बांधव है। भारतीय संस्कृति कितनी विशाल है देखिए। संत ज्ञानेश्वर माउली ने कभी ये नहीं सोचा मेरे आलंदी के लोग खुश हो रहे हैं, मेरे पुणे के लोग खुश रहे, मेरे महाराष्ट्र के लोग खुश रहे, मेरे भारत देश के लोग खुश रहे, नहीं। उन्होंने मांगा सारे विश्व के लिए, और ये विश्व जो है वो विश्व अपने मुट्ठी में बंद हो जाता है जब हमारा मन विशाल होता है, हमारा दिल विशाल होता है, और ये अच्छी तरह से सच्चा अध्यात्म, सच्चा परमात्मा का प्यार समझ में आता है जब मेरा मन विशाल हो जाता है। तो ये विश्व जो है, विश्व स्वधर्म में सूर्य पाहो, स्वधर्म में और सूर्य और पाहो। मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि ये पसायदान का जो अर्थ है वो अगर शब्दार्थ कहे तो 5 मिनट 10 मिनट में पूरा हो जाता है। सागर जो है वो आप सागर के किनारे बैठ जाओ, थोड़ा सा पैर अंदर डालो, पैर गीले कर दो, हो गया समुद्र स्नान। या सागर की लहरें जो आती है उनके साथ खेलो, डेप्थ में जाओ, डुबकी मारो, क्या मजा आएगा। फिर भी सागर पूरा नहीं होता है, या ऐसा ज्ञान है या ऐसा प्यार है परमात्मा का, वो इतना महान है, इतना गहन है कि कितनी भी डुबकी मारो मिठास बढ़ती ही जाती है। और ये मिठास जो मिलती है चिंतन में, वो आपके साथ शेयर करने में बहुत बड़ा मजा आता है। ये एपिसोड मैंने सोचा था कि विश्व स्वधर्म में सूर्य पाहो, उसका कुछ विवेचन चिंतन करे, लेकिन अभी तक हम विश्व स्वधर्म और सूर्य के यहां पहुंचे नहीं है, क्योंकि रात ही पूरी नहीं हो रही है। हम लोग कहते हैं कि रात पूरी कब होगी, दिन कब आएगा, इंतजार है, और कई लोग कहते हैं होगी ही नहीं, होगी या नहीं होगी, होगी जरूर होगी, और उसी समय होगी जिस समय होना है। और ये रात जो है, या भारतीय संस्कृति के अनुसार अंधेरा रहता है, 3-3:30 बजे भी अंधेरा रहता है, लेकिन उस अंधेरे में काम अच्छे करने होते हैं, सुबह का समय है बोलते हैं, राम प्रहर का समय है जिससे मराठी में पहाट बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छी चीजें करनी होती है, परमात्मा चिंतन करना होता है और अपनी जिंदगी बनानी होती है। और यही कार्य हम सब लोग मिलके कर रहे हैं, करेंगे, और फिर अगले एपिसोड में हम विश्व, स्वधर्म और सूर्य, उसके ऊपर चिंतन करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम शांति।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। इन दिनों हम बात कर रहे थे खुशी की और खुशी के इंडेक्स को बहुत अच्छी तरह से जब हम समझ पा रहे हैं हमने ये समझा कि इस इंडेक्स को हम बहुत आराम से स्टेबिलिटी में ला सकते हैं। लेकिन क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस इंडेक्स को फिर ऊपर फिर नीचे लेकर जाता है, इनको हम साथ साथ मिलकर खंगाल रहे हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पिछली कड़ी को देखें तो उम्मीदों की बात की थी और जब हमने कहा कि हम तो कोई उम्मीद किसी से रखते ही नहीं थे, आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू और यू नो लाइक फ्रॉम द सिचुएशन, बट देन वी आर द वंस हु से कि आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। तो अननोइंगली, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती जा रही हैं, जैसे हमने बिलीफ सिस्टम से भी बात की थी कि and actually that has helped a lot. I would like to share अपने सभी दर्शकों के साथ की और आप भी हमें जरूर अपने वो जितने भी experiences हो रहे हैं कि जो feeling जो थी, you remember हमने इस पे बात की थी कि feeling इतनी गहरी हो जाती है और वो हमें पता नहीं चल पाता कि कौन सा thought था। तो वो strong belief system, जैसे ही उस पे हमारी acts गिरनी शुरू होती है वो काम करने, it is working with me, I hope it's working with you. So amazing like results coming. तो अब हम expectations की बात करें तो वो
1: उसमें भी belief ही है। I expect the world, world means then everything, everyone, to go according to the way I want them to go, you know, to talk the way I want them to talk, to behave the way I want them to behave, to perform the way I want them to perform. तो कहीं ना कहीं मैंने एक belief बना लिया है कि जैसा मैं expect करती हूँ सब कुछ वैसा ही होने लगता है। अब जैसे आपने कहा कि हमें पता थोड़ी है कि हम सच में इतना सारा एक्सपेक्ट करते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब वो चीज़ वो नहीं होती जो हम एक्सपेक्ट एक्चुअली कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि आई वॉज सिंपल थिंग लाइक आई एक्सपेक्ट दैट मेरे घर में नल में पानी 24 घंटे आएगा। ओके आज सुबह नल खोला एंड पानी नहीं है, रोज मैं ये नहीं सोचती थी आई एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी वाटर, यू डोंट क्रिएट दैट कॉन्शियस थॉट। लेकिन जिस दिन पानी नहीं आया उस दिन हम डिस्टर्ब हो जाते, सुबह सुबह ये क्या ऐसे कैसे हो सकता है, ये कोई तरीका। दिस डिस्टर्बेंस मीन्स दैट सम एक्सपेक्टेशन ऑफ माइंड हैज नॉट गॉट फुलफिल्ड, दैट्स व्हेन आई गेट डिस्टर्ब। तो एक्सपेक्टेशंस वैसे नहीं पता चलेंगी कि हमारी कितनी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन जब कोई चीज़ हमारे अनुसार नहीं होती तब हमारा डिस्टर्ब होना, अगर हम नहीं डिस्टर्ब हुए, सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, आई वॉज एक्सेप्टिंग ईदर वेज, पानी आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, देन देर वॉज नो एक्सपेक्टेशन। लेकिन एक्सपेक्टेशन है ये कैसे पता चलेगा, किसी भी चीज में, परिस्थिति में, दुनिया में, मौसम में और लोगों के साथ, तो ऑफ कोर्स कि अगर मैं डिस्टर्ब होती हूँ तो मेरी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई है। सो यू कैन प्रोबेबली गो बैकवर्ड्स,
0: कि अगर हमें सम डिस्टर्बेंस, कुछ ऐसी बात हुई जो मुझे तंग किया एक, लेकिन यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ कुछ तो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, मतलब हम समाज में है, सोसाइटी में है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो मेरी एक्सपेक्टेशन और नॉन एक्सपेक्टेशन से परे हैं, यू नो लाइक देयर इज अ फिक्स्ड वे ऑफ लाइफ,
1: वेयर इज इट रिटन।
0: हाँ, बट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू
1: आस्क, दैट्स एक्जेक्टली द फिक्स्ड वे ऑफ लाइफ इज व्हाट आई चूज, द फिक्स्ड वे ऑफ लाइफ इज अकॉर्डिंग टू माई डेफिनेशन ऑफ फिक्स्ड वे ऑफ लाइफ। कोड ऑफ कॉन्डक्ट, लेट्स से मेरे लिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट है एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचना कहीं भी, ठीक है, मतलब जो टाइम बोला है उससे भी 5 मिनट पहले पहुंचना, दिस इज माई कोड ऑफ कॉन्डक्ट। आपका कोड ऑफ कॉन्डक्ट हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है अगर 5-10 मिनट लेट पहुंचे, कभी जल्दी भी पहुंच जाएंगे कभी ले, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, दैट इज योर कोड ऑफ कॉन्डक्ट। लेकिन अब आपका कोड ऑफ कॉन्डक्ट और मेरा कोड ऑफ कॉन्डक्ट थोड़ा सा
0: कॉन्फ्लिक्ट में
1: क्लैश होने वाला है,
0: बहुत बड़ी बात हो जाती है।
1: हाँ, तो ये तो छोटी बात है लेकिन ये होता है, क्योंकि मेरा कोड ऑफ कॉन्डक्ट या मेरे अकॉर्डिंग टू राइट वे ऑफ लिविंग क्या है कि जो कमिट किया वो टाइम पर पहुंचना है। आपका है इट्स ओके, इतनी दूर से हम ट्रैवल करके आ रहे हैं, 10-1 मिनट लेट हो गया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो नाउ इफ आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग यू अकॉर्डिंग टू माय कोड ऑफ कॉन्डक्ट, हाउ फेयर इज इट?
0: बट अगेन सिस्टर शिवानी, इट बिकम्स देन तो इट लाइक ईच वन ऑफ अस आर गोइंग टू हैव आवर कोड ऑफ कॉन्डक्ट।
1: ईच वन ऑफ अस डज हैव आवर ओन कोड ऑफ कॉन्डक्ट। अगर आप देखो हम हर एक अपने अपने राइट्स और रॉन्ग्स, इसीलिए हम कहते हैं ना राइट और रॉन्ग क्यों रिलेटिव है, हर एक ने अपनी राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन अपने अनुसार क्रिएट की हुई है।
0: वो भी हमने तब तैयार की ना जब हम एक पूरे समाज में परिवार में बढ़ते हुए अपने देखते हुए आ रहे थे। मर्यादाओं की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं या कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात करते हैं, वो हमने उस तरह से डेवलप किया।
1: उस तरह से वो सारी चीजें जो आपने कहा, समाज, हमारा कास्ट, हमारी फैमिली, वो इन्फ्लुएंसेस हैं उसके ऊपर। डेफिनेटली आप जिस कंट्री में हैं, आप जिस कास्ट को बिलोंग करते, दोज आर ऑल इन्फ्लुएंसेस। But suppose आप पंजाबी हैं, does it mean all Punjabis have the same code of conduct?
0: No.
1: आप इंडियन हैं, आप इंडिया में रहते हैं, do all Indians have the same code of conduct? No. Do all Indians, may Punjabis all have the same code of conduct? No. So it's not, okay, in India, in Punjabi, in everyone in your family, do they all have the same code of conduct?
0: No.
1: So again, सारा जो कल्चर का इन्फ्लुएंस भी अगर हम लें, कि देश का, कास्ट का, परिवार का भी ले लें, बड़ी फैमिली छोड़ो, हमारे छोटे से परिवार में चार लोग हैं, डज एवरीवन हैव द सेम कोड ऑफ
0: नो, डिफरेंट एथिक्स, डिफरेंट थॉट प्रोसेस।
1: तो हमारे कास्ट और कल्चर का, अगर हम घर में चार हैं तो चारों के ऊपर उसका थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस है, लेकिन फिर हर एक ने अपना अपना
0: अपना अपना तय कैसे किया है।
1: आपके पास कभी भी ये नहीं होगा कि सारे एक ही थॉट के साथ चले, आप कभी भी नहीं कर सकते हो। इट विल नेवर बी, बिकॉज एवरीवन इज यूजिंग देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग। तो कभी ये नहीं होगा। सी, एक्सपेक्टेशन मींस माय एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू मींस कि जैसी मेरी सोच है आपकी सोच भी
0: वैसी होनी चाहिए।
1: यही तो है ना एक्सपेक्टेशन, कि जो मेरी सोच है आपकी सोच भी सेम होनी चाहिए। आई डोंट थिंक दिस विल एवर बी पॉसिबल। फॉरगेट सारे एक सोसाइटी के अंदर हम दो लोगों की सोच भी सेम कैसे हो सकती है कभी भी, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर भी, एक पर्टिकुलर इशू को भी लेकर दो लोगों की सोच कहाँ सेम होती है? दे विल ऑलवेज बी
0: डिफरेंट,
1: अ लिटिल डिफरेंस। एंड एक्सपेक्टेशन मीन्स कि मैं एक्सपेक्ट करूँ आपकी सोच मेरी जैसी हो, difficult. Acceptance means I accept कि आपकी और मेरी सोच
0: different है. In fact, yes, I think क्योंकि expect करके भी या ये मान के भी तो disturbance मुझे आनी है.
1: It's easier नहीं. There is no other solution. हमने जितना expectation
0: हम change तो बच्चों को change, बच्चों को सही code of conduct, बच्चों को सही तरीका कि ये चीजें करनी ही चाहिए.
1: But which is very important. It doesn't see. एक है expectation, एक है किसी को आप अपना opinion दें, किसी को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से राइट और रॉन्ग बताएं। आपका जो रोल है, आप सीनियर हैं, आप पेरेंट हैं, आप टीचर हैं, दैट्स योर रोल। व्हाई इवन अमंगस्ट फ्रेंड्स, आपको अगर कुछ राइट लगता आप शेयर कर सकते हैं। डू यू नो समथिंग, आई फील यू कुड डू इट लाइक दिस, बट सेइंग आई एक्सपेक्ट यू टू डू इट लाइक दिस मींस आई एम एक्चुअली सेइंग यू बेटर डू इट लाइक दिस। देयर इज अ डिफरेंस,
0: एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इट लाइक दिस, इट मींस यू एंड यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, यू नो यू आर नॉट राइट।
1: तो वो फर्क है। तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, yes, parents बहुत सारी expectations बच्चों से रखते, लेकिन उसमें क्या है कि एक एक बार जबकि वो बच्चा उस एक्सपेक्टेशन को नहीं मीट कर पाता तो पेरेंट्स क्या हो रहे हैं?
0: हर्ट
1: हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत लेट डाउन फील करते हैं कि मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया। अब एक्सपेक्टेशन हमने ही रखी, लेट से मैंने एक्सपेक्टेशन रखी कि आपके 90% आए बच्चे के, या वो डॉक्टर बने या व्हाटएवर, मैंने एक्सपेक्टेशन रखी, वो नहीं कर पाया। मैंने रखी एक्सपेक्टेशन, वो नहीं कर पाया, मैं हर्ट हो गई, डिजेक्टेड हो गई, मैंने इतना कुछ उस प्रोसेस में कह दिया उसको, तो हमारा रिश्ता क्या हुआ? ये एक्सपेक्टेशन किसने रखी थी? मैंने ही रख ली थी। डिड द चाइल्ड से that yes I will be able, and sometimes even if the child has said that yes, you know, I will
0: there
1: do this
0: other
1: much,
0: things, you know, other factors which take over.
1: दूसरों को क्यों हम बहुत देखें? अपने बारे में क्या? Am I able to meet up to my expectations?
0: Oh yes.
1: आज हम कहते आज मैं सारा दिन में ये करूंगा, am I always able to do it? तो खुद तो खुद के expectations नहीं meet up कर पाते तो हमारे पास बहुत सारे excuses होते। वो आपको पता है ऐसा हो गया, so I couldn't do it, मैं तो पढ़ कर गया था, teacher नहीं नहीं ठीक से।
0: लेकिन कई बार तो हम नहीं अगर कर पाते तो हम अपने आप से भी इतने dejected हो जाते हैं, जैसे हम बच्चों से होते हैं या बाकियों से होते हैं। What I want to ask actually is, what is the way out?
1: लोगों को, on a society at large, बच्चों को, घर के अंदर, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मेरे लिए राइट क्यों है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और मुझे वो करने के लिए सशक्त बनाया जाए। आई नीड टू बी एम्पावर्ड इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, फुल स्टॉप। इट्स लाइक अ कोड, यू नो, जो इन्फोर्स कर दिया जाता है दूसरे के ऊपर, अगर दूसरा उसको स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं है, या दूसरे की एप्टीट्यूड ही नहीं है उतना करने की, दूसरे की कैपेसिटी ही नहीं है करने के लिए, वो नहीं कर पाएगा. एंड देन आई विल से आई एक्सपेक्टेड यू टू डू दिस, लेकिन तो आप
0: नहीं. तो फिर जैसे एक, जैसे हमने कहा कि एक कंट्री के अपने लॉ है, सिमिलरली घरों में भी कुछ लॉज होते हैं.
1: yes.
0: तो वो लॉज को अगर इवन इफ एज अ चाइल्ड आई डोंट फील कंफर्टेबल अबाउट इट, what should I do? You know, like
1: that's what I'm saying. You have to first, जो घर में हम बना रहे हैं, चलो देश के लॉज हम कट्ठे मिलकर नहीं बना सकते, घर के तो बना सकते हैं. जितना हरेक की अपनी कम्फर्ट लेवल उसमें देखी जाएगी लॉ बनाते टाइम, उतना लॉ को फॉलो करना ईजियर हो जाएगा. देन आई विल नेवर ब्रेक द लॉ. सी इफ आई एम, अगर आपने घर में एक रूल बनाया, सपोज कि 2 घंटा टीवी देखेंगे, लेकिन अगर सबने मिलकर ये रूल बनाया होगा तो आप घर में हो या नहीं हो, बच्चे फिर भी टीवी नहीं देखेंगे. लेकिन अगर आपने आपने अकेले ने रूल बना दिया कि 2 घंटा ही टीवी देखना है, बस आई एक्सपेक्ट दैट यू विल नॉट वॉच एनी मोर. अब आप जिस दिन घर पे नहीं है
0: वो पूरा दिन देखेंगे. और आप जब ऑफिस से आते हैं आप तो कंटिन्यूस टीवी देखते हैं, आप संडे को होते हैं, सैटरडे को घर होते हैं, आप पूरा टाइम टीवी.
1: सो जब हम कुछ ऐसे रूल्स भी बनाए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इवन इन एन कंपनी, इन एन ऑर्गेनाइजेशन वी कैन ट्राई, जितना हरेक जुड़ता है उसको बनाने में, हरेक कंफर्टेबल फील करता है, या हमने ये बनाया है, मुझे ये करना है. सी आज घर में क्या हो रहा है, बच्चे ये कहते हैं मेरे को अपने पेरेंट्स के लिए ये करना पड़ रहा है. दिस इज नॉट अ वेरी नाइस फीलिंग कि मुझे किसी और के लिए ये करना है, तो वो मुझे एक बंधन जैसा फील करता है. और ये कहना कि मुझे किसी और के लिए करना पड़ रहा है, इट मीन्स मैं नहीं करना चाहती, मुझे किसी और के लिए करना पड़ रहा है. या तो फिर मैं कहती ना मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम डूइंग इट, नो आई एम डूइंग दिस फॉर माय पेरेंट्स.
0: इनफैक्ट अगर हम देखें, आई जस्ट रियलाइज एक वन थॉट विच केम कि मुझे जब काम करवाना पड़ता है एज अ मदर ऑल्सो, और अगर मैं बॉस के रूप में सोचू, अगर मैंने मतलब वो करवाना भी बड़ा मुश्किल होता है. जो रूल्स और वो तय किए हुए हैं, अगर हम सबकी फ्लेक्सिबिलिटी एक्चुअली लेकर रूल्स बनाए तो हमें वो एनफोर्स नहीं करने पड़ेंगे,
1: वो नेचुरल हो जाएगा.
0: हाँ.
1: क्योंकि अगर घर में, स्टार्ट विद द हाउस, फिर ऑफिस में नेक्स्ट स्टेप पर देखते, लेकिन अगर घर में हम ये ट्राई करना शुरू करें हर एक की राय लेकर, एंड यू नो दैट फीलिंग शुड बी क्रिएटेड कि हम सब मिलकर ये बना रहे हैं, हम सबको क्या कंफर्टेबल लगता है, तो आपको कभी चेक नहीं करना पड़ेगा कि वो रूल फॉलो हो रहा है या वो नहीं हो रहा, क्योंकि वो रूल वो बच्चे ने खुद बनाया है. वो रूल अब आपके लिए नहीं फॉलो कर रहा है, वो इसलिए फॉलो कर रहा है क्योंकि उसने खुद बनाया. देखो जब क्रैकर्स गवर्नमेंट ने कहा अच्छा नहीं है, प्लास्टिक दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा अच्छा नहीं है, हमारे से ज्यादा अच्छे तो बच्चे

0: आके नहीं चलने, कोई नहीं मानेगा, बच्चा जाके छुप कर करेगा, फ्रेंड्स के साथ
1: सबसे ज्यादा
0: करेगा।
1: तो स्कूल में चलाते थे बच्चे, छुप छुप के, छुप छुप के जो चलाते थे. इनफैक्ट अमेजिंग यू नो हाउ इट हैज हैपेंड.
0: एब्सोल्युटली। तो जहां उनको अवेयरनेस क्रिएट की गई, उसके राइट्स और रॉन्ग्स पता चले, और फिर उनको बताया गया आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, द डिसीशन केम फ्रॉम द चिल्ड्रन। इट वॉज नॉट आपको ये नहीं करना है, इट वॉज आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए। द चिल्ड्रन आर वेरी मैच्योर। आप एक छोटे बच्चे को भी, 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे को उसके लेवल की बात अगर करेंगे ना, द चाइल्ड नोज वॉट इज राइट एंड रॉन्ग। अगर चाइल्ड रॉन्ग कुछ कर भी रहा है, यू टॉक टू हिम एज एन अडल्ट इंस्टेड ऑफ सेइंग ये नहीं करना है, ही विल नॉट लाइक इट। वो फिर भी करेगा क्योंकि अभी तक उसने नहीं एक्सेप्ट किया है, एंड तब वो कंटिन्यूअसली कॉन्फ्लिक्ट, आप बार बार बोलो नहीं करना है, फिर वो बार बार कर रहा है, फिर आप बार बार बोलो, और आप कितना बोलेंगे। और आज का एनवायरनमेंट ऐसे हो गया है कि फिर हम बहुत ज्यादा, हमें चेक रखना पड़ता है बच्चों पर। ठीक है, घर पे आपने कोई चीज फोर्स कर दी, ये मत पढ़ो, ये मत देखो, इन लोगों से ऐसी बात मत करो ना, वट एवर, क्योंकि हम कहते हैं आजकल बहुत कुछ हो रहा है सोसाइटी में। बाहर जाने के बाद आप क्या करेंगे? कैन यू चेक? वो बच्चा कंप्यूटर पर बैठा है, कैन यू चेक एवरी टाइम? आप कितना टाइम खड़े रहेंगे चेक करने के लिए कि वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा? दैट विल नॉट बी द वे। एंड जितना आप इस तरह से फोर्सफुली रूल इम्पोज करेंगे, उनके अंदर और भी ज्यादा आएगा कि हमें वो करना है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ, अवेयरनेस के साथ और मैच्योरिटी के साथ डिस्कस करेंगे एंड देन एम्पावर करेंगे, फिर वो खुद अपना, उसको अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट में डालेंगे। यू नो, एक है मैं आपका कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो करूं, लेकिन एक है आपका कोड ऑफ कॉन्डक्ट मेरे कोड ऑफ कॉन्डक्ट की लिस्ट में आ जाए, तो फिर फॉलो करना मेरे
1: आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, वो उसका हुआ ना, तो मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ खत्म हो जाएगी।
0: तो कितनी सारी चीजें हो गई, एक तो मैंने आपके कोड ऑफ कॉन्डक्ट को समझा, अपनाया। मेन चीज है मुझे उसे अपनाना है। एक बार मैंने अपनाया, मैंने अपने लिए उसको किया क्योंकि मुझे करना अच्छा लगता है। और दूसरा, अगर मैं नहीं भी बाय चांस कर पाई, आप हर्ट नहीं होंगे क्योंकि मैं आपके लिए नहीं कर रहे थे। आई एम डूइंग दिस नाउ फॉर माई सेल्फ एंड नीदर विल आई बी अंडर द प्रेशर। यू नो, ये प्रेशर है बहुत ज्यादा, हस्बैंड वाइफ का, पेरेंट्स बच्चों का, बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर के अंडर है, आई हैव टू डू दिस फॉर माई पेरेंट्स। तो प्रेशर के अंडर परफॉर्मेंस, एंड इसमें भी अगर हम एक चीज देखें कि औरों से एक्सपेक्टेशंस तो चलो देखते करनी या नहीं करनी, अपने से एक्सपेक्टेशंस, अपने से तो एक्सपेक्टेशंस रखें ना। इफ आई कैन एक्सपेक्ट के यू डू व्हाट आई वांट, व्हाट अबाउट मी एक्सपेक्टिंग दैट
1: आई शुड डू व्हाट आई वांट।
0: एंड जब अपनी एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट हम बनाते, तो उसमें भी हमारी एक्सपेक्टेशंस यही हैं अपने आप से, मैं सारा अपना काम खत्म कर लूँ, आई एम अ गुड पेरेंट, मेरे बच्चों को ये करा दो, वो भी सेकेंडरी है। जब हम अपनी एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट बनाएं, क्योंकि हमें बहुत आदत है एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट में हमारी फर्स्ट जो अपने आप से होनी चाहिए वो है हैप्पीनेस,
1: whether I'm happy or not.
0: Yeah, what about that? Because ये सारी जो एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट है, आप ऐसा करो, आप ऐसा बोलो, मौसम ठीक रहे, ट्रैफिक, ये इसलिए है सारा कुछ, क्योंकि ये सब चीजें जब होंगी तो मेरा मन कैसा रहेगा?
1: शांत।
0: जब कोई भी इनमें से चीज डिस्टर्ब होती है, तब मेरा मन डिस्टर्ब होता है।
1: नलके में से पानी नहीं आना,
0: तो मैं डिस्टर्ब हुई ना, आई गॉट डिस्टर्ब, दैट्स व्हाई आई वाज एक्सपेक्टिंग कि पानी आना चाहिए, क्योंकि पानी आता तो मैं ठीक रहती,
1: तो नॉर्मल रहता ना, ठीक, मतलब पता भी नहीं चलता कि मैंने ये एक्सपेक्ट किया था।
0: सो नाउ लेट्स पुट ऑन आवर एक्सपेक्टेशन लिस्ट, सबसे पहले कि मेरी अपने से क्या अपेक्षाएं हैं। मेरी अपने आप से अपेक्षाएं हैं खुशी, शांति, स्टेबिलिटी, इसको फर्स्ट रखते, बाकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी उसके बाद रखते। तो उसमें क्या होगा, एक है आपने मेरे से ठीक से नहीं बात की, तो यू हैव नॉट कम अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। लेकिन उससे पहले मुझे ये याद रखना है कि मेरी अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशन है, कि मुझे स्टेबल रखना रहना है। सो एम आई अलाउड टू गेट डिस्टर्ब जब आपने मुझसे बात नहीं की?
1: लेकिन एक बात है, आई डोंट नो हाउ मच टाइम इज गोइंग टू टेक, बिकॉज अगर पानी नहीं आया या ड्राइवर नहीं पहुंचा, तो पहला जो रिएक्शन है या पहला जो क्रिएशन है, ऑफ कोर्स नाउ आई स्टार्टेड सेइंग क्रिएशन, इज द डिस्टरबेंस।
0: तो क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन सबसे रख रहे हो एक्सेप्ट फॉर
1: फ्रॉम योरसेल्फ।
0: बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है ना, उनमें एक और ऐड करते हैं ऊपर कि फर्स्ट एक्सपेक्टेशन जो मेरी है वो ये कि चाहे कुछ भी हो जाए, पहले मुझे ठीक रहना है। मुझे
1: कैसे याद रखें, ये कैसे
0: धीरे धीरे आपके

0: सिस्टम में फिट होगा ना, बिलीव सिस्टम्स को तो रिप्लेस कर रहे हैं ना. सो और उसमें भी क्या बिलीव सिस्टम ये है कि मैं हूँ ही स्टेबल, मुझे स्टेबल होना नहीं है, मैं हूँ ही स्टेबल. तो पहले मुझे सिर्फ किसका ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है और अपने बिलीव सिस्टम को चेक करना है कि दूसरे मेरे अनुसार
1: काम नहीं
0: करने वाले नहीं है, चलने वाले नहीं है, व्यवहार करने वाले
1: कभी भी कुछ भी हो सकता है. यू नो अगेन इट मींस दैट व्हेनेवर द सिचुएशन विल कम, दिस बिलीफ सिस्टम शुड पॉप अप ऑन द स्क्रीन, ऑन माय कंप्यूटर स्क्रीन. I am stable.
0: It is. That's most important. That's the only thing which helps me cross every scene. क्योंकि होता क्या, expectations रखना means क्या, मैं अपनी सोच के अनुसार expectations रखती हूँ. See, expectations सारी मेरी एक particular सोच है, मेरे एक particular belief system है और मैं समझती हूँ सब लोगों को वही बिलीफ सिस्टम से चलना चाहिए क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम
1: ठीक है.
0: क्योंकि मैं तो ठीक ही हूँ ना, मेरा गलत होना तो वो तो आई नेवर थॉट अबाउट इट. तो मैं ठीक हूँ, मेरा बिलीफ ठीक है, तो सबको उसी बिलीफ के अनुसार चलना चाहिए. हाउ इज दिस एवर पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है. तो हम ही असंभव चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एवरीवन शुड गो अकॉर्डिंग टू माय बिलीफ और फिर हम इम्पॉसिबल एक्सपेक्ट करके जब वो नहीं पूरा होता तो हम डिस्टर्ब होते और जैसे ही हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती फिर हम डिस्टर्ब होते.
1: दिस इज मेजर फैक्टर.
0: फिर हम जजमेंटल भी होते.
1: ओह यस,
0: यू नो सारी कितनी इंटीग्रेटेड हो जाती हैं चीज. मैंने एक्सपेक्टेशन रखी कि आप मुझसे स्वीटली बात करेंगे, अब आपने नहीं की ड्यू टू सो मेनी फैक्टर्स. आज आपका मूड ठीक नहीं है, आज आपका मन नहीं किया,
1: या हो सकता है मेरे मन में कोई और बात आपसे जुड़ी, किसी ने कुछ कहा है मुझे आपके लिए, कुछ भी हो सकता है.
0: लेकिन मैंने एक्सपेक्ट क्या किया था कि आप मेरे से दिस पर्टिकुलर व्यवहार से करेंगे, आपने नहीं किया, तुरंत मैं क्या हो जाऊंगी, आपके प्रति जजमेंटल, आपके प्रति क्रिटिकल. फिर वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगा, वाणी में आएगा, फिर वो सिर्फ आपको नहीं बोलूंगी और सो मच
1: और पूरा टाइम रहेगा जब तक, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, जब तक मैं कोई जजमेंट पास नहीं कर दूंगी तब तक वो मेरे साथ थॉट रहता रहेगा.
0: क्योंकि हमने जजमेंट क्या पास करनी है. सी मेरा बिलीफ ये है, आपने वो बिलीफ फॉलो नहीं किया तो मैंने जजमेंट सिर्फ एक ही तो पास करनी है कि आप गलत हैं. वो तो मुझे पहले से ही पता था. सी द मिनट समवन इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अकॉर्डिंग टू माय बिलीफ, माय थॉट, माय वे ऑफ वर्किंग, मुझे जजमेंट सिर्फ यही पास करना है, मैं सही हूँ, दूसरे गलत हैं. यही तो हम सारा दिन कर रहे हैं. आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, जैसा आप बोल रहे हो वो रॉन्ग, जैसा आप काम कर रहे हो वो. वी नॉट रेडी टू एक्सेप्ट के हर एक का काम करने का अपना अपना तरीका है, हर एक अपने एप्टीट्यूड से, अपने स्किल से, अपने सिंसियरिटी लेवल से. सी इवन सिंसियरिटी, हमारी वैल्यूज भी कई बार हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाती जब हम उसको एक्सपेक्टेशन के साथ जोड़ते हैं. सपोज वन पर्टिकुलर पर्सन ऑफिस में बहुत सिंसियर है, वो दिन रात काम करता है, सिंसियरिटी उसकी वैल्यू है, ऑनेस्टी इंटेग्रिटी उसकी वैल्यू है, वो कभी हमेशा सच बोलता, कभी झूठ नहीं बोलता. लेकिन फिर वो ये एक्सपेक्ट करते
1: कि सब लोग
0: ऐसे होंगे. अब नाउ वो ही वैल्यू फिर उसके लिए डिस्टर्बेंस का कारण बन जाती, क्योंकि जब भी कोई उतनी सिंसियरिटी से काम नहीं करेगा, जब भी कोई उतनी ऑनेस्टी से बिहेव नहीं करेगा, जो कि होने वाला, बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट, तो आई एम गोइंग टू गो लाइक दिस. सो एक्सपेक्टेशन मींस क्या, जैसे हम हैं
1: जैसी
0: हमारी सोच है सारे लोग वैसे ही चलने वाले हैं, ये कभी नहीं होने वाला है. सो द सूनर वी कैन लर्न, you know, this is also a learning, कि जैसे ही आप डिस्टर्ब होते हैं चेक करें कि किससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आज. you know, अगर हम एक चीज ट्राई करें, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, कि अगर आपको कोई बात लगती कि वो सही है, यू आर वेरी श्योर कि ये सही है, शेयर इट दूसरे के साथ, आप शेयर करें, बच्चे के साथ शेयर करें, लेकिन सिर्फ अपने आप को ये याद दिला दें कि अगर वो पूरा नहीं कर पाएगा मैं हर्ट नहीं होंगी. बस इतना रखना है,
1: पूरा भी नहीं, रिजेक्ट भी कम्प्लीटली करते जो भी,
0: मतलब उसको वो नहीं अगर अपने जीवन में करते मैं हर्ट नहीं होंगी. तो उससे क्या होगा, आप अपनी वो राइट बात आप कहते जाओ, बताते जाओ, विदाउट गेटिंग हर्ट डिजेक्टेड, धीरे धीरे यू विल फाइंड द अदर पर्सन एक्सेप्टिंग व्हाट यू हैव टू से. क्यों वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि पहले हमने उनको
1: एक्सेप्ट किया.
0: तो जैसे हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे तो धीरे धीरे वो भी फिर हमें एक्सेप्ट कर लेंगे. और वो जो बात हम उन्हें कह रहे, दिस इज कॉल्ड एम्पावरमेंट. दूसरे को एक्सेप्ट करना मतलब एक्सेप्टेंस की एनर्जी होती है, एम्पावरिंग एनर्जी, सशक्त करना. और रिजेक्शन की एनर्जी वो दूसरे को और नीचे, और दूसरा परे हट जाता है, मुझे करना ही नहीं है, मेरे से नहीं होगा, आई कैन डू व्हाट यू वांट मी टू डू. बट इफ यू गिव दिस एक्सेप्टेंस एनर्जी, उनके अंदर वो ताकत आ जाती है, वो करके दिखाएंगे जो व्हाट यू वांट देम टू डू. सो एक्सपेक्टेशंस, यस, वेरी डिफिकल्ट एकदम से लेट गो करना, लेकिन ये तो ध्यान रख सकते कि
1: मेरे को
0: डिस्टर्ब नहीं होना है.
1: यू नो,
0: सबसे पहली एक्सपेक्टेशन पहले पूरी करनी है अपनी वाली,
1: अपने आप से. एक्चुअली इट्स अमेजिंग, यू नो, हम जैसे बिलीफ सिस्टम पर काम करते आ रहे हैं, वैसे ही ये मेजर छोटी छोटी बातों की जो एक्सपेक्टेशंस है हमसे, कि वही नल में पानी नहीं आया, या बच्चा ऐसे ही बिहेव करेगा, या मेरा सबॉर्डिनेट जो है ही हैज टू परफॉर्म दिस वे, दैट इज, वो प्रैक्टिकल हो सकता है. यू नो, अगेन ये भी एक बहुत मेजर फैक्टर होता है कि मेरा ऑफिस है, मेरा प्रोजेक्ट है, परफॉर्मेंस हैज टू बी दिस वे. तो उसमें फिर हम क्या अपने आप को लॉजिक दे सकते हैं?
0: उसमें हम ये कि हमारे साथ जितने भी लोग हैं, या हमारे जूनियर्स भी अगर हैं, हर एक का अपना अपना एप्टीट्यूड है, स्किल है. मैं सीनियर पोजीशन पर अगर हूँ तो मैं सीनियर पर इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे अंदर कोई विशेषता है. लेकिन आपके सारे टैलेंट्स और स्किल्स के साथ एक सीनियर के अंदर जो सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि उनके साथ या उनके अंडर काम करने वाले लोगों की क्वालिटी को, टैलेंट को बढ़ाना. लेकिन हम सोचते नहीं, जो मेरा स्किल है उनका भी ऑटोमेटिकली उसी लेवल का होना चाहिए. दैट्स नॉट नेसेसरी पॉसिबल. एंड कई बार ये भी हो सकता कि जो हमारे जूनियर हैं उनको कोई ऐसी चीज, उनका स्किल हमारे से भी बेटर हो सकता, लेकिन अगर हमने उनको कहा कि आप मेरा वाला तरीका ही करो, तो कई बार हम दूसरे की क्रिएटिविटी को डैम्पन कर देते हैं और वर्क एफिशिएंसी पर भी उसका
1: यही बात है कि जितने भी हम देखते हैं एग्जांपल्स जहां बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए, वो तभी हो पाया जब टीम ने लीडर की विजन को अपनी विजन बनाया. यू नो, नाउ इवन इफ देयर इज समबडी जो नहीं उसे एक्सेप्ट कर पा रहा या नहीं उसको मीट कर पा रहा, इट्स परफेक्टली फाइन.
0: एंड व्हेन आई रिमेन हैप्पी, वो जो नहीं मीट कर पा रहा वो भी कर लेगा, क्योंकि हम उनको वो ताकत, ये हम अगर याद रखें, ये बहुत बड़ा मंत्र है. यू नो, इट्स अ वेरी पावरफुल टूल विद विच वी कैन एम्पावर पीपल अराउंड अस. माय नॉट गेटिंग डिस्टर्ब्ड empowers others because I accept them, they accept themselves, and then they accept me. That's the way energy flows.
1: Beautiful. In fact, this is again one very important belief system which we have to start integrating. Apna subha ka pehla kagaz pe jo pehla line hum likhenge, wo yehi ki I expect from myself to remain happy, you know, not to get disturbed. Ye agar hum pehla, to hamara index will नहीं होने वाला जब तक हमें ये याद रहेगा. सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच. और अपने ओम शांति, अपने सभी दर्शकों से भी आप विदा लेते हैं, लेकिन बार बार यही बात आती है कि जब देखना शुरू करते हैं, एक्चुअली इट्स अमेजिंग, यू नो, जब हमने देखना शुरू किया, जब अपने काम करना शुरू कर दिया, अपने पर समझा, उसको इम्प्लीमेंट करने लग गए, तो प्रोजेक्ट जो है वो जरूर सक्सेसफुल हो रहा है. तो हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स का जो प्रोजेक्ट है वो इन दिनों खूब तेजी पर है. वो एक स्टेबिलिटी को, जिसको हम जिस लेवल पर लेकर आना चाहते हैं, वहाँ पर बिल्कुल पहुँचता जा रहा है. लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी बातें अगर अभी भी हैं जो उसको डिस्टर्ब करती हैं, आपको बिल्कुल स्वागत करते हैं. आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 01242660 9993444 6 9873666 555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, इसमें आज इतना ही, लेकिन इस श्रृंखला में जो हमने समझा है, जो जाना है, जिसे इम्प्लीमेंट किया है, इसको और सुदृढ़ करते रहेंगे आने वाली कड़ियों में. अभी विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: कृषि विभाग महाराष्ट्र शासन आत्मा आणि रेडिओ वत्सगुण द्वारा प्रसारित कृषि कार्यक्रम श्रृंखला ऐकत रहा रेडिओ वत्सगुण 90.8 FM वर आवाज वाशिमचा वाशिमचा।
1: किसानों की बात रेडिओ वत्सगुण के साथ हा शेतकरी बांधवांसाठीचा खास कार्यक्रम रेडिओ वत्सगुण ने प्रसारित केला होता। आमची यानंतरची उद्घोषणा काही क्षणातच।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे साथ है भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया का एक बेहद प्रतिष्ठित नाम, जो कि है प्रसिद्ध सितार वादक इटावा इमदाद खानी घराने।
1: इसका मतलब है कि जब सीधा रास्ता होता है तो उसमें शॉर्टकट मत ढूंढे, सीधे रास्ते पे शॉर्टकट नहीं होता।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला फिर से हमारे खानदेश कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी, कान्हा ललित कला केंद्र और रेडियो मनभाव।

0: खानदेश कॉलेज एज्युकेशन सोसायटीच्या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर जळगाव यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलं आहे माइंड स्प्रिंग 2026 एक्झिबिशन कम सेल. आणि प्रथमच या एक्झिबिशनची संकल्पना आहे टर्न युअर इनोव्हेशन इंटू एंटरप्राइज, म्हणजेच तुमच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनेचं रूपांतर उद्योजकतेमध्ये. 6 आणि 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी बास्केटबॉल कोर्ट खानदेश कॉलेज एज्युकेशन सोसायटीचे मूळचे महाविद्यालय जळगाव कॅम्पस मध्ये. या एक्झिबिशन मध्ये आयडिया, प्रोटोटाइप, वर्किंग प्रॉडक्ट आणि रनिंग स्टार्टअप विथ सेल्स अशा विविध स्तरांवरील नाविन्यपूर्ण कल्पना आणि उत्पादन पाहायला मिळणार आहेत. म्हणूनच जळगावकरांनो, नवीन कल्पना पाहण्यासाठी, नवीन उत्पादनं जाणून घेण्यासाठी आणि युवा उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि इनोव्हेशनच्या या भन्नाट विश्वाचा अनुभव घेण्यासाठी 6 आणि 7 ऑक्टोबरला भेट द्या माइंड स्प्रिंग 2026 एक्झिबिशन कम सेलला. कारण कल्पना फक्त मनात ठेवायची नसते, तिला संधी द्यायची असते आणि त्या संधीचं एंटरप्राइज मध्ये रूपांतर करायचं असतं. माइंड स्प्रिंग 2026 टर्न युअर इनोव्हेशन इंटू एंटरप्राइज. आपणही या भन्नाट उपक्रमाचा नक्की लाभ घ्या आणि माइंड स्प्रिंग 2026 ला आवर्जून भेट द्या.
1: नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, हमने गुरु की महिमा सुनी, गुरु के बाणों की मार को समझा और कल हमने अंधे गुरुओं से सावधान रहने की बात भी की. लेकिन आज कबीर एक ऐसी कड़वी सच्चाई हमारे सामने रख रहे हैं जो आज के युग में और भी सच साबित हो रही हैं. वह हैं गुरु और शिष्य के बीच लालच का खेल. जब रिश्ता सत्य के लिए नहीं बल्कि स्वार्थ के लिए जुड़ता है तो उसका अंत क्या होता है, आइए जानते हैं आज के दोहे से. श्रोताओं, कबीर कहते हैं कि अध्यात्म कोई व्यापार नहीं है, लेकिन जब गुरु के मन में धन या मान का लालच आ जाए और शिष्य के मन में कोई सांसारिक इच्छा, तो वह रिश्ता वहीं खत्म हो जाता है. कबीर ने इसे बहुत कठोर शब्दों में बयां किया है. ना गुरु मिल्या ना शीश भया, लालच खिल्या दांव, दुन्यु बड़े धार में चढ़ी पाथर की नाव.

इस दोहे का दर्शन है निस्वार्थ भाव का दर्शन। कबीर कहते हैं, ना गुरु मिला ना शीश भया, ना तो उसे सच्चा गुरु मिला और ना ही सच्चा शिष्य बन पाया। क्यों? क्योंकि बीच में लालच ने अपना दांव खेल दिया था। गुरु को लालच था शिष्य की संपत्ति या उसकी संख्या का, और शिष्य को लालच था गुरु के आशीर्वाद से अपना कोई सांसारिक काम निकलवाने का। कबीर कहते हैं कि यह रिश्ता सत्य की तलाश नहीं बल्कि स्वार्थ की सौदेबाजी थी, और इसका परिणाम कबीर एक अद्भुत उपमा देते हैं, चढ़ी पाथर की नाव। यह ऐसा ही है जैसे कोई पत्थर की नाव पर बैठकर दरिया पार करना चाहे। पत्थर की नाव तो खुद डूबती ही हैं, उस पर बैठने वाले को भी ले डूबती हैं। जब गुरु और शिष्य दोनों के आधार ही भारी पत्थर जैसे लालच हो, तो वे दोनों बुढ़े धार में, वे दोनों संसार की इस मायावी धार में डूब जाते हैं। दर्शन कहता है कि गुरु शिष्य का संबंध पारस और लोहे जैसा होना चाहिए, न कि दुकानदार और ग्राहक जैसा। कबीर आज हमें चेता रहे हैं कि जहां लालच है वहां बोध कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, आज हम हर जगह इंस्टेंट शांति और चमत्कार ढूंढ रहे हैं। क्या हम गुरु के पास ज्ञान के लिए जा रहे हैं या अपनी इच्छाओं की लिस्ट लेकर? याद रखिए, अगर नाव पत्थर की होगी तो डूबना तय है। अपनी श्रद्धा को लालच से मुक्त रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम।

0: तथागता दशशिलाच्या संवर्धनानंतर तू कथन केल्यास अपरिहार्य बाबी लोभ, अज्ञान, प्राणहत्या, क्रोध, व्याभिचार आणि असत्य संभाषण. तू म्हणालास या बाबींनी ढासळतो पाया व्यक्तिगत शुद्धीचा. त्यामुळे माणसाने एकमेकांशी वागावे सदाचरणाने, करावा समावेश जीवनात आपल्या आर्य अष्टांगिक मार्गाचा दशशील संवर्धनासह माणसाने. करावे प्रेम माणसावर, परंतु प्रेमाच्याही पुढे त्याने करावी मैत्री माणसाशी. मैत्री ही असते व्यापक, जास्त समर्पक प्रेमापेक्षा. मैत्रीमध्ये जाणीव होते बंधुभावाची, ती नसते मर्यादित मानवापुरती. सद्गुणी माणसाला असते आवश्यकता आचरणासाठी, प्रज्ञेची, बुद्धीची, विवेकाची. आंधळेपणाने झालेले सत्कृत्य म्हणताच येते उचित असे नाही. सद्गुणाचा मार्ग उतरला पाहिजे हा प्रज्ञेच्या कसोटीला, विवेकाच्या जाणीवेला. बा तथागता, तुला विचारले एकदा, तुझ्यानंतर धम्माचा वारस कोण? तू म्हणालास व्यक्तिनिष्ठा बनते धम्माची अडसर, तुम्ही धम्माचे दायाद व्हा. धम्म म्हणजे नीती, धम्म म्हणजे विचार, धम्म म्हणजे शील संवर्धन, धम्म म्हणजे शील संपन्न जगण्याचा उत्कर्ष. धम्माचे अनुसरण करण्याचा तू संदेश दिलास आणि अतिशय स्पष्टपणाने तू म्हणालास मी तुमचा मार्गदाता आहे, मोक्षदाता नव्हे. धर्म प्रवर्तकांनी बऱ्याच साक्षात्कारी म्हणून घेतले स्वतःला, म्हणाले बरेच मी आहे निर्माता तुमचा, करा माझी पूजा आणि मिळून घ्या मोक्ष तुमच्या आत्म्याला. कुणी म्हणाले मीच देव, मीच तुमचे सर्व काही. कुणी म्हणाले मी ईश्वराचा पुत्र, तर कुणी म्हणाले मी ईश्वराचा प्रेषित दूत. परंतु तू नाकारलेस ईश्वरवादाला, कल्पना कर्मकांडाला, कोणत्याही अविवेकी असत्य विधानाला. तू म्हणाला नसतेच असे काही मोक्ष मिळवून देणे हातात कोणाच्या उद्धारासह. आपणच करावायचा असतो उद्धार आपुला ज्ञानाने, शील संवर्धनाने, आचरणाने, प्रज्ञावंत होऊन अत्तदीप भव मार्गाने प्रवास करून. तू म्हणालास मी तुमचा मार्गदाता आहे, मोक्षदाता नव्हे. निब्बाणाकडे जाण्याचा मार्ग मी दाखवीन तुम्हाला. पण निब्बाणाकडे जाण्याचा संकल्प आणि वाटचाल करावायची असते ज्याने त्याने. समाधान, आनंद आणि तटस्थता लाभत नसते अशी कधीही कुणाच्या कृपेमुळे. त्यासाठी आपल्यालाच चालावा लागतो बुद्धिवादी शील मार्ग संकल्पाने. बा तथागता, तू म्हणालास निब्बाण म्हणजे परमसुख. निब्बाणासारखे परमसुख लाभत नाही दुसरे कशाने. तुझ्या सर्व सिद्धांतामध्ये निब्बाण हा सिद्धांत केंद्रवर्ती. हे निब्बाण म्हणजे काय? तुझ्या अगोदर काही लोकांनी निब्बाणाला केला प्रयत्न असा संबोधण्याचा की निब्बाण म्हणजे मोक्ष होय. चार प्रकारचा मोक्ष मानला जात असे पूर्वी. त्यातील पहिला म्हणजे खा प्या मजा करा, याचे स्वरूप जड. दुसरा मानला जात असे यौगिक. तिसऱ्याला म्हटले जाई ब्राह्मणी आणि चौथा औपनिषदिक. होते साम्य ब्राह्मणी आणि औपनिषदिक निब्बाण कल्पनेमध्ये. या कल्पनांनी संबोधले अस्तित्व स्वतंत्र आत्म्याचे. पण तथागता, तू या सिद्धांताचा निषेध केलास आणि त्या शिकवणुकीचे खंडन करून त्याची मांडणी किती फोल आहे ती निरर्थकता तू सिद्ध केलीस. जड कल्पनेमधील निब्बाण म्हणजे इंद्रियांची तुष्टी होय, इंद्रियांचे शमन असल्यामुळे अंश मात्र अध्यात्म नसते, त्यामुळे नाही होऊ शकत कल्याण माणसाचे जड मार्गाने, हा नव्हे निब्बाण मार्गाची प्राप्ती करणारा.
1: नमस्ते, जळगावकर. खान्देश कॉलेज एज्युकेशन सोसायटीच्या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर जळगाव यांच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलं आहे माइंड स्प्रिंग 2026 एक्झिबिशन कम सेल. आणि प्रथमच या एक्झिबिशनची संकल्पना आहे टर्न युअर इनोव्हेशन इंटू एंटरप्राइज, म्हणजेच तुमच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनेचं रूपांतर उद्योजकतेमध्ये. 6 आणि 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी बास्केटबॉल कोर्ट खान्देश कॉलेज एज्युकेशन सोसायटीचे मूळचे महाविद्यालय जळगाव कॅम्पस मध्ये. या एक्झिबिशन मध्ये आयडिया, प्रोटोटाइप, वर्किंग प्रॉडक्ट आणि रनिंग स्टार्टअप विथ सेल्स अशा विविध स्तरांवरील नाविन्यपूर्ण कल्पना आणि उत्पादन पाहायला मिळणार आहेत. म्हणूनच जळगावकरांनो, नवीन कल्पना पाहण्यासाठी, नवीन उत्पादनं जाणून घेण्यासाठी आणि युवा उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि इनोव्हेशनच्या या भन्नाट विश्वाचा अनुभव घेण्यासाठी 6 आणि 7 ऑक्टोबरला भेट द्या माइंड स्प्रिंग 2026 एक्झिबिशन कम सेलला. कारण कल्पना फक्त मनात ठेवायची नसते, तिला संधी द्यायची असते आणि त्या संधीचं एंटरप्राइज मध्ये रूपांतर करायचं असतं. माइंड स्प्रिंग 2026 टर्न युअर इनोव्हेशन इंटू एंटरप्राइज. आपणही या भन्नाट उपक्रमाचा नक्की लाभ घ्या आणि माइंड स्प्रिंग 2026 ला आवर्जून भेट द्या.
2: नमस्कार, ओम शांती. दुरितांचे तिमिर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात. दुरित क्या है, तिमिर क्या है, इसके ऊपर हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की. तिमिर अंधेरा, रात. और ये रात जो है वो कब खत्म होगी, उसके इंतजार में बहुत सारे आत्माएं, हम लोग कभी कभी बहुत बार सोचते हैं कि ये रात खत्म कब होगी. देखिए, शायर लोग जो होते हैं वो भी रात को बहुत अच्छी तरह से वर्णन करते हैं रात का. संत लोग जो है वो भी वर्णन करते हैं. हर एक का कवि जो है अपनी अपनी भावना के अनुसार रात का वर्णन करता है. रात अच्छी है या बुरी है? रात अच्छी भी है और बुरी भी है. क्योंकि देखिए, हमारे जो कहावतें हैं, हम जो कहते हैं, हम जो बोलते हैं, वो भी मुझे लगता है आध्यात्मिक स्वरूप से बोलते हैं. रात में अगर कुछ दुष्कर्म होता है तो हम मान लेते हैं, लेते नहीं लेते. रात में अगर दुष्कर्म होता है तो मान लेते हैं, कोई बुरी बात कहता है तो भी हम सह लेते हैं. लेकिन अगर सुबह सुबह उठ के कोई बुरी बात कहता है तो हम क्या कहते हैं? सुबह सुबह अशुभ मत बोलो, सुबह सुबह ऐसी बातें मत करो. मीन्स सुबह जो है वो आशा है, रात जो है वो निराशा है, और इसे निशा भी कहते हैं रात को. तो ये रात जो है वो तो दिन में है, हर दिन में दिन भी आता है, रात भी आती है, और वो चक्र शुरू है. अगर ये चक्र दिन और रात का शुरू है तो युगों का भी चक्र शुरू होगा. हम तो कहते हैं साइकिल, टोटल साइक्लिक वर्ड है, लीनियर है ही नहीं. साइक्लिक वर्ड है, वर्ल्ड है, लीनियर है ही नहीं. और इसलिए विश्व, और इसलिए जब भी सुबह होती है, सुबह का प्रहर भी, उसे राम प्रहर कहा जाता है. राम प्रहर, रावण प्रहर नहीं. आजकल क्या हो गया है, हमारा रामायण सीरियल शुरू हो गया. देखने के बाद मुझे आश्चर्य लगा कि राम के बजाय रावण हिट हो गया, रावण हीरो बन गया। रावण के ऊपर व्हाट्सएप पे जोक भी आते हैं, उसमें ये भी कहते हैं रावण ने बहुत अच्छा काम किया। रावण ब्राह्मण था, रावण पंडित था, है बिल्कुल सही है, क्योंकि रावण जो है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में, रावण एक संकल्पना है और वो रावण जो है वो माया है, मायावी रावण। तो ऐसा रावण सारे विश्व में भरा हुआ है, हर एक के मन में भरा हुआ है और हर एक के मन में राम भी है। वो मन में जो राम है वो सुबह जागृत होता है, और राम प्रहर में इसलिए हम कहते हैं कि अशुभ मत बोलो शुभ बोलो। तो ये दुरितान से तिमिर, तिमिर के ऊपर हमने अभी चर्चा कर रहे थे। तो ये तिमिर जब जाएगा, कब जाएगा, जब सूर्य आएगा, और इसलिए दूसरा जो चरण है या दूसरा आधा चरण है, दुरितान से तिमिर जावो, जावो ठीक है जाए, लेकिन विश्व स्वधर्म में सूर्य पाहो। विश्व स्वधर्म और सूर्य कितना कहे है, कितना बोले उतना कम है। ये विश्व जो है, ये विश्व ची माझे घर, हे विश्व ची माझे घर, सारा विश्व जो है वो मेरा घर है। बंधुत्व, विश्व बंधुत्व, ये सारे विश्व में जो बांधव है, सारे विश्व में जो लोग है वो मेरे बांधव है। भारतीय संस्कृति कितनी विशाल है देखिए। संत ज्ञानेश्वर माउली ने कभी ये नहीं सोचा मेरे आलंदी के लोग खुश हो रहे हैं, मेरे पुणा के लोग खुश रहे, मेरे महाराष्ट्र के लोग खुश रहे, मेरे भारत देश के लोग खुश रहे, नहीं। उन्होंने मांगा सारे विश्व के लिए, और ये विश्व जो है वो विश्व अपने मुट्ठी में बंद हो जाता है जब हमारा मन विशाल होता है, हमारा दिल विशाल होता है, और ये अच्छी तरह से सच्चा अध्यात्म, सच्चा परमात्मा का प्यार समझ में आता है जब मेरा मन विशाल हो जाता है। तो ये विश्व जो है, विश्व स्वधर्म में सूर्य पाहो, स्वधर्म और सूर्य और पाहो। मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि ये पसायदान का जो अर्थ है वो अगर शब्दार्थ कहे तो 5 मिनट 10 मिनट में पूरा हो जाता है। सागर जो है वो आप सागर के किनारे बैठ जाओ, थोड़ा सा पैर अंदर डालो, पैर गीले कर दो, हो गया समुद्र स्नान। या सागर की लहरें जो आती है उनके साथ खेलो, डेप्थ में जाओ, डुबकी मारो, क्या मजा आएगा। फिर भी सागर पूरा नहीं होता है, या ऐसा ज्ञान है, या ऐसा प्यार है परमात्मा का, वो इतना महान है, इतना गहन है कि कितनी भी डुबकी मारो मिठास बढ़ती ही जाती है। और ये मिठास जो मिलती है चिंतन में, वो आपके साथ शेयर करने में बड़ा मजा आता है। ये एपिसोड मैंने सोचा था कि विश्व स्वधर्म में सूर्य पाहो, उसका कुछ विवेचन चिंतन करे, लेकिन अभी तक हम विश्व स्वधर्म और सूर्य के यहां पहुंचे नहीं है, क्योंकि रात ही पूरी नहीं हो रही है। हम लोग कहते हैं कि रात पूरी कब होगी, दिन कब आएगा, इंतजार है, और कई लोग कहते हैं होगी ही नहीं, होगी या नहीं होगी, होगी जरूर होगी, और उसी समय होगी जिस समय होना है। और ये रात जो है, या भारतीय संस्कृति के अनुसार अंधेरा रहता है, 3-3:30 बजे भी अंधेरा रहता है, लेकिन उस अंधेरे में काम अच्छे करने होते हैं, सुबह का समय है बोलते हैं, राम प्रहर का समय है जिससे मराठी में पहाट बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छी चीजें करनी होती है, परमात्मा चिंतन करना होता है और अपनी जिंदगी बनानी होती है। और यही कार्य हम सब लोग मिलके कर रहे हैं, करेंगे, और फिर अगले एपिसोड में हम विश्व, स्वधर्म और सूर्य उसके ऊपर चिंतन करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। इन दिनों हम बात कर रहे थे खुशी की, और खुशी के इंडेक्स को बहुत अच्छी तरह से जब हम समझ पा रहे हैं, हमने ये समझा कि इस इंडेक्स को हम बहुत आराम से स्टेबिलिटी में ला सकते हैं। लेकिन क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस इंडेक्स को फिर ऊपर फिर नीचे लेकर जाता है, इनको हम साथ साथ मिलकर खंगाल रहे हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पिछली कड़ी को देखें तो उम्मीदों की बात की थी, और जब हमने कहा कि हम तो कोई उम्मीद किसी से रखते ही नहीं थे, आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू और यू नो लाइक फ्रॉम द सिचुएशन, बट देन वी आर द वंस हु से कि आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। तो अननोइंगली, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती जा रही हैं, जैसे हमने बिलीफ सिस्टम से भी बात की थी कि And actually that has helped a lot. I would like to share अपने सभी दर्शकों के साथ की, और आप भी हमें जरूर अपने वो जितने भी experiences हो रहे हैं कि जो feeling जो थी, you remember हमने इस पे बात की थी कि feeling इतनी गहरी हो जाती है और वो हमें पता नहीं चल पाता कि कौन सा thought था। तो वो strong belief system, जैसे ही उस पे हमारी acts गिरनी शुरू होती है, वो काम करने, it is working with me, I hope it's working with you. So amazing like results coming. तो अब हम expectations की बात करें तो वो
1: उसमें भी belief ही है। I expect the world, world means then everything, everyone, to go according to the way I want them to go, you know, to talk the way I want them to talk, to behave the way I want them to behave, to perform the way I want them to perform. तो कहीं ना कहीं मैंने एक belief बना लिया है कि जैसा मैं expect करती हूँ सब कुछ वैसा ही होने लगता है। हम जैसे आपने कहा कि हमें पता थोड़ी है कि हम सच में इतना सारा एक्सपेक्ट करते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब वो चीज़ वो नहीं होती जो हम एक्सपेक्ट एक्चुअली कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि आई वॉज एक्सपेक्ट। सिंपल थिंग लाइक आई एक्सपेक्ट दैट मेरे घर में नल में पानी 24 घंटे आएगा, ओके आज सुबह नल खोला एंड पानी नहीं है, रोज मैं ये नहीं सोचती थी आई एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी वाटर, यू डोंट क्रिएट दैट कॉन्शियस थॉट। लेकिन जिस दिन पानी नहीं आया उस दिन हम डिस्टर्ब हो जाते, सुबह सुबह ये क्या, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई तरीका। दिस डिस्टर्बेंस मीन्स दैट सम एक्सपेक्टेशन ऑफ माइंड हैज नॉट गॉट फुलफिल्ड, दैट्स व्हेन आई गेट डिस्टर्ब। तो एक्सपेक्टेशंस वैसे नहीं पता चलेंगी कि हमारी कितनी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन जब कोई चीज हमारे अनुसार नहीं होती तब हमारा डिस्टर्ब होना, अगर हम नहीं डिस्टर्ब हुए, अगर हम नहीं डिस्टर्ब हुए, सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, आई वॉज एक्सेप्टिंग ईदर वेज, पानी आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, देन देर वॉज नो एक्सपेक्टेशन। लेकिन एक्सपेक्टेशन है ये कैसे पता चलेगा, किसी भी चीज में, परिस्थिति में, दुनिया में, मौसम में और लोगों के साथ, तो ऑफ कोर्स कि अगर मैं डिस्टर्ब होती हूँ तो मेरी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई है, सो यू कैन प्रोबेबली गो बैकवर्ड्स।
0: यस, कि अगर हमें सम डिस्टर्बेंस, कुछ ऐसी बात हुई जो मुझे तंग किया एक, लेकिन यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ, कुछ तो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, मतलब हम समाज में है, सोसाइटी में है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो मेरी एक्सपेक्टेशन और नॉन एक्सपेक्टेशन से परे हैं, यू नो लाइक देयर इज अ फिक्स्ड वे ऑफ लाइफ,
1: वेयर इज इट रिटन।
0: हाँ, बट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू
1: आस्क, दैट्स एक्जेक्टली द फिक्स्ड वे ऑफ लाइफ इज व्हाट आई चूज, द फिक्स्ड वे ऑफ लाइफ इज अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन ऑफ फिक्स्ड वे ऑफ लाइफ। कोड ऑफ कंडक्ट, लेट्स से मेरे लिए कोड ऑफ कंडक्ट है एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचना कहीं भी, ठीक है, मतलब जो टाइम बोला है उससे भी 5 मिनट पहले पहुंचना, दिस इज माय कोड ऑफ कंडक्ट। आपका कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है अगर 5-10 मिनट लेट पहुंचे, कभी जल्दी भी पहुंच जाएंगे कभी ले, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, दैट इज योर कोड ऑफ कंडक्ट। लेकिन अब आपका कोड ऑफ कंडक्ट और मेरा कोड ऑफ कंडक्ट थोड़ा सा
0: कॉन्फ्लिक्ट में
1: क्लैश होने वाला है,
0: बहुत बड़ी बात हो जाती है।
1: हाँ, तो ये तो छोटी बात है लेकिन ये होता है, क्योंकि मेरा कोड ऑफ कंडक्ट या मेरे अकॉर्डिंग टू राइट वे ऑफ लिविंग क्या है कि जो कमिट किया वो टाइम पर पहुंचना है। आपका है इट्स ओके, इतनी दूर से हम ट्रैवल करके आ रहे हैं, 10-1 मिनट लेट हो गया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो नाउ इफ आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग यू अकॉर्डिंग टू माय कोड ऑफ कंडक्ट, हाउ फेयर इज इट।
0: बट अगेन सिस्टर शिवानी, इट बिकम्स देन टू इट लाइक ईच वन ऑफ अस आर गोइंग टू हैव आवर कोड ऑफ कंडक्ट।
1: ईच वन ऑफ अस डज हैव आवर ओन कोड ऑफ कंडक्ट। अगर आप देखो हम हर एक अपने अपने राइट्स और रॉन्ग्स, इसीलिए हम कहते हैं ना राइट और रॉन्ग क्यों रिलेटिव है, हर एक ने अपनी राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन किसने अनुसार क्रिएट की हुई है?
0: वो भी हमने तब तैयार की ना जब हम एक पूरे समाज में परिवार में बढ़ते हुए अपने देखते हुए आ रहे थे। मर्यादाओं की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, या कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात करते हैं, वो हमने उस तरह से डेवलप किया।
1: उस तरह से वो सारी चीजें जो आपने कहा, समाज, हमारा कास्ट, हमारी फैमिली, वो इन्फ्लुएंसेस हैं उसके ऊपर। डेफिनेटली आप जिस कंट्री में हैं, आप जिस कास्ट को बिलोंग करते, दोज आर ऑल इन्फ्लुएंसेस। But suppose आप पंजाबी हैं, does it mean all Punjabis have the same code of conduct?
0: No.
1: आप इंडियन हैं, आप इंडिया में रहते हैं, do all Indians have the same code of conduct? No. Do all Indians, may Punjabis all have the same code of conduct? No. So it's not, okay, in India, in Punjabi, in everyone in your family, do they all have the same code of conduct?
0: No.
1: So again, सारा जो कल्चर का इन्फ्लुएंस भी अगर हम लें, कि देश का, कास्ट का, परिवार का भी ले लें, जो बड़ी फैमिली छोड़ो, हमारे छोटे से परिवार में चार लोग हैं, डज एवरीवन हैव द सेम कोड ऑफ
0: नो, डिफरेंट एथिक्स, डिफरेंट थॉट प्रोसेस।
1: तो हमारे कास्ट और कल्चर का, अगर हम घर में चार हैं तो चारों के ऊपर उसका थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस है, लेकिन फिर हर एक ने अपना अपना
0: अपना अपना तय कैसे किया है।
1: आपके पास कभी भी ये नहीं होगा कि सारे एक ही थॉट के साथ चले। आप कभी भी नहीं कर सकते हो, इट विल नेवर बी, बिकॉज एवरीवन इज यूजिंग देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग। तो कभी ये नहीं होगा। सी, एक्सपेक्टेशन मींस माय एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू, मींस कि जैसी मेरी सोच है आपकी सोच भी
0: वैसे होनी चाहिए।
1: यही तो है ना एक्सपेक्टेशन, कि जो मेरी सोच है आपकी सोच भी सेम होनी चाहिए। आई डोंट थिंक दिस विल एवर बी पॉसिबल। फॉरगेट सारे एक सोसाइटी के अंदर हम दो लोगों की सोच भी सेम कैसे हो सकती है? कभी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर भी, एक पर्टिकुलर इशू को भी लेकर दो लोगों की सोच कहाँ सेम होती है? दे विल ऑलवेज बी
0: Difference.
1: A little difference. And expectation means कि मैं एक्सपेक्ट करूँ आपकी सोच मेरी जैसी हो, difficult. Acceptance means I accept कि आपकी और मेरी सोच
0: different है. In fact, yes, I think क्योंकि expect करके भी या ये मान के भी तो disturbance मुझे आनी है.
1: It's easier नहीं. There is no other solution. हमने जितना expectation
0: हम change तो बच्चों को change, बच्चों को सही code of conduct, बच्चों को सही तरीका कि ये चीजें करनी ही चाहिए.
1: But which is very important. It doesn't see. एक है expectation, एक है किसी को आप अपना opinion दें, किसी को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से राइट और रॉन्ग बताएं। आपका जो रोल है, आप सीनियर हैं, आप पेरेंट हैं, आप टीचर हैं, दैट्स योर रोल। व्हाई इवन अमंगस्ट फ्रेंड्स, आपको अगर कुछ राइट लगता आप शेयर कर सकते हैं। डू यू नो समथिंग, आई फील यू कुड डू इट लाइक दिस, बट सेइंग आई एक्सपेक्ट यू टू डू इट लाइक दिस मींस आई एम एक्चुअली सेइंग यू बेटर डू इट लाइक दिस। देयर इज अ डिफरेंस,
0: एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इट लाइक दिस, इट मींस यू एंड यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, यू नो, यू आर नॉट राइट।
1: तो वो फर्क है। तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, यस, पेरेंट्स बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस बच्चों से रखते, लेकिन उसमें क्या है कि एक एक बार जबकि वो बच्चा उस एक्सपेक्टेशन को नहीं मीट कर पाता, तो पेरेंट्स क्या हो रहे हैं?
0: हर्ट
1: हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत लेट डाउन फील करते हैं कि मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया। अब एक्सपेक्टेशन हमने ही रखी, लेट्स से मैंने एक्सपेक्टेशन रखी कि आपके 90% आए बच्चे के, या वो डॉक्टर बने, या व्हाटएवर, मैंने एक्सपेक्टेशन रखी, वो नहीं कर पाया। मैंने रखी एक्सपेक्टेशन, वो नहीं कर पाया, मैं हर्ट हो गई, डिजेक्टेड हो गई, मैंने इतना कुछ उस प्रोसेस में कह दिया उसको, तो हमारा रिश्ता क्या हुआ? ये एक्सपेक्टेशन किसने रखी थी? मैंने ही रख ली थी। डिड द चाइल्ड से that yes I will be able, and sometimes even if the child has said that yes, you know, I will
0: there
1: do this
0: other
1: much,
0: things, you know, other factors which take over.
1: दूसरों को क्यों हम बहुत देखें, अपने बारे में क्या? Am I able to meet up to my expectations?
0: Oh yes.
1: आज हम कहते आज मैं सारा दिन में ये करूंगा, am I always able to do it? तो खुद तो खुद के expectations नहीं meet up कर पाते, तो हमारे पास बहुत सारे excuses होते। वो आपको पता है ऐसा हो गया, so I couldn't do it, मैं तो पढ़ कर गया था, teacher नहीं नहीं ठीक से।
0: लेकिन कई बार तो हम नहीं अगर कर पाते तो हम अपने आप से भी इतने dejected हो जाते हैं, जैसे हम बच्चों से होते हैं या बाकियों से होते हैं। What I want to ask actually is, what is the way out?
1: लोगों को, on a society at large, बच्चों को, घर के अंदर, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मेरे लिए राइट क्यों है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और मुझे वो करने के लिए सशक्त बनाया जाए। आई नीड टू बी एम्पावर्ड इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, फुल स्टॉप। इट्स लाइक अ कोड, यू नो, जो इन्फोर्स कर दिया जाता है दूसरे के ऊपर, अगर दूसरा उसको स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं है, या दूसरे की एप्टीट्यूड ही नहीं है उतना करने की, दूसरे की कैपेसिटी ही नहीं है करने के लिए, वो नहीं कर पाएगा. एंड देन आई विल से आई एक्सपेक्टेड यू टू डू दिस, लेकिन तो आप
0: नहीं. तो फिर जैसे एक, जैसे हमने कहा कि एक कंट्री के अपने लॉ है, सिमिलरली घरों में भी कुछ लॉज होते हैं.
1: yes.
0: तो वो लॉज को अगर इवन इफ एज अ चाइल्ड आई डोंट फील कंफर्टेबल अबाउट इट, what should I do? You know, like
1: that's what I'm saying. You have to first, जो घर में हम बना रहे हैं, चलो देश के लॉज हम कट्ठे मिलकर नहीं बना सकते, घर के तो बना सकते हैं. जितना हरेक की अपनी कंफर्ट लेवल उसमें देखी जाएगी लॉ बनाते टाइम, उतना लॉ को फॉलो करना इजियर हो जाएगा. देन आई विल नेवर ब्रेक द लॉ. सी इफ आई एम, अगर आपने घर में एक रूल बनाया, सपोज के 2 घंटा टीवी देखेंगे, लेकिन अगर सबने मिलकर ये रूल बनाया होगा तो आप घर में हो या नहीं हो, बच्चे फिर भी टीवी नहीं देखेंगे. लेकिन अगर आपने अकेले ने रूल बना दिया कि 2 घंटा ही टीवी देखना है, बस आई एक्सपेक्ट दैट यू विल नॉट वॉच एनी मोर. अब आप जिस दिन घर पे नहीं है
0: वो पूरा दिन देखेंगे. और आप जब ऑफिस से आते हैं आप तो कंटिन्यूस टीवी देखते हैं, आप संडे को होते हैं, सैटरडे को घर होते हैं, आप पूरा टाइम टीवी.
1: सो जब हम कुछ ऐसे रूल्स भी बनाएं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इवन इन एन कंपनी, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन ट्राई, जितना हरेक जुड़ता है उसको बनाने में, हरेक कंफर्टेबल फील करता है, या हमने ये बनाया है, मुझे ये करना है. सी आज घर में क्या हो रहा है, बच्चे ये कहते हैं मेरे को अपने पेरेंट्स के लिए ये करना पड़ रहा है. दिस इज नॉट अ वेरी नाइस फीलिंग कि मुझे किसी और के लिए ये करना है, तो वो मुझे एक बंधन जैसा फील करता है. और ये कहना कि मुझे किसी और के लिए करना पड़ रहा है, इट मीन्स मैं नहीं करना चाहती, मुझे किसी और के लिए करना पड़ रहा है. या तो फिर मैं कहती ना मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम डूइंग इट, नो आई एम डूइंग दिस फॉर माय पेरेंट्स.
0: इनफैक्ट अगर हम देखें, आई जस्ट रियलाइज एक वन थॉट विच केम कि मुझे जब काम करवाना पड़ता है एज अ मदर ऑल्सो, और अगर मैं बॉस के रूप में सोचूं, अगर मैंने वो करवाना भी बड़ा मुश्किल होता है. जो रूल्स और वो तय किए हुए हैं, अगर हम सबकी फ्लेक्सिबिलिटी एक्चुअली लेकर रूल्स बनाए तो हमें वो एनफोर्स नहीं करने पड़ेंगे,
1: वो नेचुरल हो जाएगा.
0: हाँ.
1: क्योंकि अगर घर में, स्टार्ट विद द हाउस, फिर ऑफिस में नेक्स्ट स्टेप पर देखते, लेकिन अगर घर में हम ये ट्राई करना शुरू करें हरेक की राय लेकर, एंड यू नो दैट फीलिंग शुड बी क्रिएटेड कि हम सब मिलकर ये बना रहे हैं, हम सबको क्या कम्फर्टेबल लगता है, तो आपको कभी चेक नहीं करना पड़ेगा कि वो रूल फॉलो हो रहा है या वो नहीं हो रहा, क्योंकि वो रूल वो बच्चे ने खुद बनाया है. वो रूल अब आपके लिए नहीं फॉलो कर रहा है, वो इसलिए फॉलो कर रहा है क्योंकि उसने खुद बनाया. देखो जब क्रैकर्स गवर्नमेंट ने कहा अच्छा नहीं है, प्लास्टिक दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा अच्छा नहीं है, हमारे से ज्यादा अच्छे तो बच्चे फॉलो कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनको स्कूल में वो समझाया गया, उसका डैमेज पता, एंड चिल्ड्रन आर वेरी गुड विद इट.
0: दे वर एम्पावर्ड, दे वर अलाउड टू टेक डिसीजंस, एक्चुअली दे वर ट्रीटेड एज एडल्ट्स.
1: एब्सोल्युटली, एंड दे लाइक दैट. एवरीवन लाइक्स दैट कि अच्छा मुझे समझाया गया और फिर मुझे बताया गया आपको क्या. सी नो वन सेड बैन क्रैकर्स. अगर आप घर में बोल देते चाहे कुछ भी हो जाए पटाखे नहीं चलने, कोई नहीं मानेगा, बच्चा जाके छुप कर करेगा, फ्रेंड्स के साथ.
0: सबसे ज्यादा तो स्कूल में चलाते थे बच्चे, छुप छुप के जो चलाते थे. एंड इनफैक्ट अमेजिंग हाउ इट हैज हैपेंड.
1: एब्सोल्युटली. तो जहां उनको अवेयरनेस क्रिएट की गई, उसके राइट्स और रॉन्ग्स पता चले, और फिर उनको बताया गया आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, द डिसीजन केम फ्रॉम द चिल्ड्रन. इट वॉज नॉट आपको ये नहीं करना है, इट वॉज आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए. द चिल्ड्रन आर वेरी मेच्योर. आप एक छोटे बच्चे को भी, 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे को उसके लेवल की बात अगर करेंगे ना, द चाइल्ड नोज वॉट इज राइट एंड रॉन्ग. अगर चाइल्ड रॉन्ग कुछ कर भी रहा है, यू टॉक टू हिम एज एन अडल्ट इंस्टेड ऑफ सेइंग ये नहीं करना है, ही विल नॉट लाइक इट. वो फिर भी करेगा क्योंकि अभी तक उसने नहीं एक्सेप्ट किया है. एंड तब वो कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट, आप बार बार बोलो नहीं करना है, फिर वो बार बार कर रहा है, फिर आप बार बार बोलो, और आप कितना बोलेंगे. और आज का एनवायरनमेंट ऐसे ही हो गया है कि फिर हम बहुत ज्यादा, हमें चेक रखना पड़ता है बच्चों पर. ठीक है, घर पे आपने कोई चीज फोर्स कर दी, ये मत पढ़ो, ये मत देखो, इन लोगों से ऐसी बात मत करो, नो वट एवर, क्योंकि हम कहते हैं आजकल बहुत कुछ हो रहा है सोसाइटी में. बाहर जाने के बाद आप क्या करेंगे? कैन यू चेक? वो बच्चा कंप्यूटर पर बैठा है, कैन यू चेक एवरी टाइम? आप कितना टाइम खड़े रहेंगे चेक करने के लिए कि वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा? That will not be the way. And jitna aap is tarah se forcefully rule impose karenge, unke andar aur bhi zyada aayega ki hame wo karna hai. Lekin understanding ke saath, awareness ke saath aur maturity ke saath discuss karenge and then empower karenge. फिर वो खुद अपना उसको अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट में डालेंगे. यू नो, एक है मैं आपका कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो करूं, लेकिन एक है आपका कोड ऑफ कॉन्डक्ट मेरे कोड ऑफ कॉन्डक्ट की लिस्ट में आ जाए तो फिर फॉलो करना
0: मेरे आसान हो जाएगा. और सबसे बड़ी बात है वो उसका हुआ ना तो मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ खत्म हो जाएगी.
1: तो कितनी सारी चीजें हो गई. एक तो मैंने आपके कोड ऑफ कॉन्डक्ट को समझा, अपनाया. मेन चीज है मुझे उसे अपनाना है. एक बार मैंने अपनाया, मैंने अपने लिए उसको किया क्योंकि मुझे करना अच्छा लगता है. और दूसरा, अगर मैं नहीं भी बाय चांस कर पाई, आप हर्ट नहीं होंगे क्योंकि मैं आपके लिए नहीं कर रहे थे. आई एम डूइंग दिस नाउ फॉर माई सेल्फ एंड नीदर विल आई बी अंडर द प्रेशर. यू नो, ये प्रेशर है बहुत ज्यादा, हस्बैंड वाइफ का, पेरेंट्स बच्चों का. बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर के अंडर है, आई हैव टू डू दिस फॉर माई पेरेंट्स. तो प्रेशर के अंडर परफॉर्मेंस. एंड इसमें भी अगर हम एक चीज देखें कि औरों से एक्सपेक्टेशंस तो चलो देखते करनी या नहीं करनी, अपने से एक्सपेक्टेशंस, अपने से तो एक्सपेक्टेशंस रखें ना. इफ आई कैन एक्सपेक्ट के यू डू व्हाट आई वांट, व्हाट अबाउट मी एक्सपेक्टिंग दैट
0: आई शुड डू व्हाट आई वांट.
1: एंड जब अपनी एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट हम बनाते तो उसमें भी हमारी एक्सपेक्टेशंस यही हैं अपने आप से, मैं सारा अपना काम खत्म कर लूँ, आई एम अ गुड पेरेंट, मेरे बच्चों को ये करा दो, वो भी सेकेंडरी है. जब हम अपनी एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट बनाएं, क्योंकि हमें बहुत आदत है एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट में हमारी फर्स्ट जो अपने आप से होनी चाहिए वो है हैप्पीनेस.
0: Whether I'm happy or not.
1: Yeah, what about that? Because ये सारी जो एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट है, आप ऐसा करो, आप ऐसा बोलो, मौसम ठीक रहे, ट्रैफिक, ये इसलिए है सारा कुछ क्योंकि ये सब चीजें जब होंगी तो मेरा मन कैसा रहेगा?
0: छात्र.
1: जब कोई भी इनमें से चीज डिस्टर्ब होती है तब मेरा मन डिस्टर्ब होता है.
0: नलके में से पानी नहीं आना
1: तो मैं डिस्टर्ब हुई ना, आई गॉट डिस्टर्ब. दैट्स व्हाई आई वाज एक्सपेक्टिंग कि पानी आना चाहिए, क्योंकि पानी आता तो मैं ठीक रहती.
0: तो नॉर्मल रहता ना, ठीक, मतलब पता भी नहीं चलता कि मैंने ये एक्सपेक्ट किया था.
1: या सो नाउ लेट्स पुट ऑन आवर एक्सपेक्टेशन लिस्ट. सबसे पहले कि मेरी अपने से क्या अपेक्षाएं हैं. मेरी अपने आप से अपेक्षाएं हैं खुशी, शांति, स्टेबिलिटी. इसको फर्स्ट रखते, बाकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी उसके बाद रखते. तो उसमें क्या होगा, एक है आपने मेरे से ठीक से नहीं बात की, तो यू हैव नॉट कम अप टू माई एक्सपेक्टेशंस. लेकिन उससे पहले मुझे ये याद रखना है कि मेरी अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशन है, कि मुझे स्टेबल रखना रहना है. सो एम आई अलाउड टू गेट डिस्टर्ब जब आपने मुझसे बात नहीं की.
0: लेकिन एक बात है, आई डोंट नो हाउ मच टाइम इज गोइंग टू टेक, बिकॉज अगर पानी नहीं आया

0: ये कि चाहे कुछ भी हो जाए पहले मुझे ठीक रहना है, मुझे
1: कैसे याद रखें, ये कैसे
0: धीरे धीरे आपके बिलीफ सिस्टम में फिट होगा ना, बिलीफ सिस्टम्स को तो रिप्लेस कर रहे हैं ना. सो और उसमें भी क्या बिलीफ सिस्टम ये है कि मैं हूँ ही स्टेबल, मुझे स्टेबल होना नहीं है, मैं हूँ ही स्टेबल. तो पहले मुझे सिर्फ किसका ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है और अपने बिलीफ सिस्टम को चेक करना है कि दूसरे मेरे अनुसार
1: काम नहीं
0: करने वाले नहीं है, चलने वाले नहीं है, व्यवहार करने वाले
1: कभी भी कुछ भी हो सकता है. यू नो अगेन इट मींस दैट व्हेनेवर द सिचुएशन विल कम दिस बिलीफ सिस्टम शुड पॉप अप ऑन द स्क्रीन, ऑन माय कंप्यूटर स्क्रीन. I am stable.
0: It is. That's most important. That's the only thing which helps me cross every scene. क्योंकि होता क्या, expectations रखना means क्या, मैं अपनी सोच के अनुसार expectations रखती हूँ. See, expectations सारी मेरी एक पर्टिकुलर सोच है, मेरे एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम है और मैं समझती हूँ सब लोगों को वही बिलीफ सिस्टम से चलना चाहिए क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम
1: ठीक है.
0: ठीक है क्योंकि मैं तो ठीक ही हूँ ना, मेरा गलत होना तो वो तो आई नेवर थॉट अबाउट इट. तो मैं ठीक हूँ, मेरा बिलीफ ठीक है, तो सबको उसी बिलीफ के अनुसार चलना चाहिए. हाउ इज दिस एवर पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है. तो हम ही असंभव चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एवरीवन शुड गो अकॉर्डिंग टू माय बिलीफ और फिर हम इम्पॉसिबल एक्सपेक्ट करके जब वो नहीं पूरा होता तो हम डिस्टर्ब होते और जैसे ही हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती फिर हम डिस्टर्ब होते फिर हम जजमेंटल भी होते
1: हैं.
0: सारी कितनी इंटीग्रेटेड हो जाती है चीज. मैंने एक्सपेक्टेशन रखी कि आप मुझसे स्वीटली बात करेंगे, अब आपने नहीं की ड्यू टू सो मेनी फैक्टर्स. आज आपका मूड ठीक नहीं है, आज आपका मन नहीं किया,
1: या हो सकता है मेरे मन में कोई और बात आपसे जुड़ी, किसी ने कुछ कहा है मुझे आपके लिए, कुछ भी हो सकता है.
0: लेकिन मैंने एक्सपेक्ट क्या किया था कि आप मेरे से दिस पर्टिकुलर व्यवहार से करेंगे, आपने नहीं किया, तुरंत मैं क्या हो जाऊंगी, आपके प्रति जजमेंटल, आपके प्रति क्रिटिकल. फिर वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगा, वाणी में आएगा, फिर वो सिर्फ आपको नहीं बोलूंगी और सो मच
1: और पूरा टाइम रहेगा जब तक, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल आएगा जब तक मैं कोई जजमेंट पास नहीं कर दूंगी, तब तक वो मेरे साथ थॉट रहता रहेगा.
0: क्योंकि हमने जजमेंट क्या पास करनी है. सी मेरा बिलीफ ये है, आपने वो बिलीफ फॉलो नहीं किया, तो मैंने जजमेंट सिर्फ एक ही तो पास करनी है कि आप गलत हैं. वो तो मुझे पहले से ही पता था. सी द मिनट समवन इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अकॉर्डिंग टू माय बिलीफ, माय थॉट, माय वे ऑफ वर्किंग, मुझे जजमेंट सिर्फ यही पास करना है, मैं सही हूँ, दूसरे गलत हैं. यही तो हम सारा दिन कर रहे हैं. आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, जैसा आप बोल रहे हो वो रॉन्ग, जैसा आप काम कर रहे हो वो. वी नॉट रेडी टू एक्सेप्ट के हर एक का काम करने का अपना अपना तरीका है, हर एक अपने एप्टीट्यूड से, अपने स्किल से, अपनी सिंसियरिटी लेवल से. सी इवन सिंसियरिटी, हमारी वैल्यूज भी कई बार हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है जब हम उसको एक्सपेक्टेशन के साथ जोड़ते हैं. सपोज वन पर्टिकुलर पर्सन ऑफिस में बहुत सिंसियर है, वो दिन रात काम करता है, सिंसियरिटी उसकी वैल्यू है, ऑनेस्टी इंटेग्रिटी उसकी वैल्यू है, वो कभी हमेशा सच बोलता, कभी झूठ नहीं बोलता. लेकिन फिर वो ये एक्सपेक्ट करते
1: कि सब लोग
0: ऐसे होंगे. अब नाउ वो ही वैल्यू फिर उसके लिए डिस्टर्बेंस का कारण बन जाती, क्योंकि जब भी कोई उतनी सिंसियरिटी से काम नहीं करेगा, जब भी कोई उतनी ऑनेस्टी से बिहेव नहीं करेगा, जो कि होने वाला बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट, तो आई एम गोइंग टू गो लाइक दिस. सो एक्सपेक्टेशन मींस क्या, जैसे हम हैं
1: वैसे
0: जैसे हमारी सोच है सारे लोग वैसे ही चलने वाले हैं, ये कभी नहीं होने वाला है. सो द सूनर वी कैन लर्न, you know, this is also a learning, कि जैसे ही आप disturb होते हैं, check करें कि किससे क्या expect कर रहे थे आज. you know, अगर हम एक चीज try करें, this is an experiment, कि अगर आपको कोई बात लगती कि वो सही है, you're very sure कि ये सही है, share it, दूसरे के साथ आप share करें, बच्चे के साथ share करें, लेकिन सिर्फ अपने आप को ये याद दिला दें कि अगर वो पूरा नहीं कर पाएगा मैं हर्ट नहीं होंगी. बस इतना रखना है,
1: पूरा भी नहीं, रिजेक्ट भी कम्प्लीटली करते
0: जो भी, मतलब उसको वो नहीं अगर अपने जीवन में करते मैं हर्ट नहीं होंगी. तो उससे क्या होगा, आप अपनी वो राइट बात आप कहते जाओ, बताते जाओ, विदाउट गेटिंग हर्ट डिजेक्टेड, धीरे धीरे यू विल फाइंड द अदर पर्सन एक्सेप्टिंग व्हाट यू हैव टू से. क्यों वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि पहले हमने उनको
1: एक्सेप्ट
0: किया. तो जैसे ही हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो धीरे धीरे

0: वो भी फिर हमें एक्सेप्ट कर लेंगे. और वो जो बात हम उन्हें कह रहे, दिस इज कॉल्ड एम्पावरमेंट. दूसरे को एक्सेप्ट करना मतलब एक्सेप्टेंस की एनर्जी होती है, एम्पावरिंग एनर्जी, सशक्त करना. और रिजेक्शन की एनर्जी वो दूसरे को और नीचे, और दूसरा परे हट जाता है, मुझे करना ही नहीं है, मेरे से नहीं होगा, आई कैन डू व्हाट यू वांट मी टू डू. बट इफ यू गिव दिस एक्सेप्टेंस एनर्जी, उनके अंदर वो ताकत आ जाती है, वो करके दिखाएंगे व्हाट यू वांट देम टू डू. तो एक्सपेक्टेशंस, यस, वेरी डिफिकल्ट एकदम से लेट गो करना, लेकिन ये तो ध्यान रख सकते कि
1: मेरे को
0: डिस्टर्ब नहीं होना है.
1: You know,
0: सबसे पहले एक्सपेक्टेशन पहले पूरी करनी है अपनी वाली,
1: अपने आप से. एक्चुअली इट्स अमेजिंग, यू नो, हम जैसे बिलीफ सिस्टम्स पर काम करते आ रहे हैं, वैसे ही ये मेजर छोटी छोटी बातों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे, कि वही नल में पानी नहीं आया, या बच्चा ऐसे ही बिहेव करेगा, या मेरा सबॉर्डिनेट जो है ही हैज टू परफॉर्म दिस वे, दैट इज, वो प्रैक्टिकल हो सकता है. यू नो, अगेन ये भी एक बहुत मेजर फैक्टर होता है कि मेरा ऑफिस है, मेरा प्रोजेक्ट है, परफॉर्मेंस हैज टू बी दिस वे. तो उसमें फिर हम क्या अपने आप को लॉजिक दे सकते हैं?
0: उसमें हम ये कि हमारे साथ जितने भी लोग हैं, या हमारे जूनियर्स भी अगर हैं, हर एक का अपना अपना एप्टीट्यूड है, स्किल है. मैं सीनियर पोजीशन पर अगर हूँ तो मैं सीनियर पर इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे अंदर कोई विशेषता है. लेकिन आपकी सारे टैलेंट्स और स्किल्स के साथ एक सीनियर के अंदर जो सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि उनके साथ या उनके अंडर काम करने वाले लोगों की क्वालिटी को, टैलेंट को बढ़ाना. लेकिन हम सोचते नहीं, जो मेरा स्किल है उनका भी ऑटोमेटिकली उसी लेवल का होना चाहिए. दैट्स नॉट नेसेसरी पॉसिबल. एंड कई बार ये भी हो सकता कि जो हमारे जूनियर हैं उनको कोई ऐसी चीज, उनका स्किल हमारे से भी बेटर हो सकता, लेकिन अगर हमने उनको कहा कि आप मेरा वाला तरीका ही करो, तो कई बार हम दूसरे की क्रिएटिविटी को डैम्पन कर देते हैं और वर्क एफिशिएंसी पर भी उसका
1: यही बात है कि जितने भी हम देखते हैं एग्जांपल्स जहां बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए, वो तभी हो पाया जब टीम ने लीडर की विजन को अपनी विजन बनाया. यू नो, नाउ इवन इफ देयर इज समबडी जो नहीं उसे एक्सेप्ट कर पा रहा या नहीं उसको मीट कर पा रहा, इट्स परफेक्टली फाइन. यू नो,
0: एंड व्हेन आई रिमेन हैप्पी, वो जो नहीं मीट कर पा रहा वो भी कर लेगा, क्योंकि हम उनको वो ताकत, ये हम अगर याद रखें, ये बहुत बड़ा मंत्र है. यू नो, इट्स अ वेरी पावरफुल टूल विद विच वी कैन एम्पावर पीपल अराउंड अस. माय नॉट गेटिंग डिस्टर्ब्ड एम्पावर्स अदर्स, बिकॉज आई एक्सेप्ट देम, दे एक्सेप्ट देमसेल्व्स, एंड देन दे एक्सेप्ट मी. दैट्स द वे एनर्जी फ्लोज.
1: ब्यूटिफुल. इनफैक्ट दिस इज अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट बिलीफ सिस्टम विच वी हैव टू स्टार्ट इंटीग्रेटिंग. अपना सुबह का पहला कागज पे जो पहला लाइन हम लिखेंगे वो यही कि आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई सेल्फ टू रिमेन हैप्पी, यू नो, नॉट टू गेट डिस्टर्ब्ड. ये अगर हम पहला, तो हमारा इंडेक्स फिर नहीं होने वाला जब तक हमें ये याद रहेगा. सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच.
0: ओम शांति.
1: और अपने ओम शांति अपने सभी दर्शकों से भी विदा लेते हैं, लेकिन बार बार यही बात आती है कि जब देखना शुरू करते हैं, एक्चुअली इट्स अमेजिंग, यू नो, जब हमने देखना शुरू किया, जब अपने काम करना शुरू कर दिया, अपने पर समझा, उसको इम्प्लीमेंट करने लग गए, तो प्रोजेक्ट जो है वो ज़रूर सक्सेसफुल हो रहा है. तो हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स का जो प्रोजेक्ट है वो इन दिनों खूब तेज़ी पर है. वो एक स्टेबिलिटी को, जिसको हम जिस लेवल पर लेकर आना चाहते हैं, वहाँ पर बिल्कुल पहुँचता जा रहा है. लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी बातें अगर अभी भी हैं जो उसको डिस्टर्ब करती हैं, आपको बिल्कुल स्वागत करते हैं. आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 01244-266-7000, 99993-44-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन इस श्रृंखला में जो हमने समझा है, जो जाना है, जिसे इम्प्लीमेंट किया है, इसको और सुदृढ़ करते रहेंगे आने वाली कड़ियों में. अभी विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: कृषि विभाग महाराष्ट्र शासन आत्मा आणि रेडिओ वत्सगुलम द्वारा प्रसारित कृषि कार्यक्रम श्रृंखला ऐकत रहा रेडिओ वत्सगुलम 90.8 FM वर आवाज वाशिमचा वाशिमचा।
1: किसानों की बात रेडिओ वत्सगुलम के साथ हा शेतकरी बांधवांसाठीचा खास कार्यक्रम रेडिओ वत्सगुलम ने प्रसारित केला होता। आमची यानंतरची उद्घोषणा काही क्षणातच।